लाइफ में हम सबसे ज्यादा उन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। आप देखिए ना, एक छोटी सी चीज से इस चीज को समझते हैं। आपके घर में सोफा सेट है, आप रोज जाकर उस पे बैठते हैं, आराम से थकान उतारते हैं और एक बढ़िया सी कॉफी उस सोफे पे बैठ के एंजॉय करते हैं। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा थकान में होते हैं, सुबह के शाम को घर पहुंचे सुबह से निकले हुए और फिर वो सोफा सेट दिखता है ना। लेकिन क्या कभी उसको थैंक यू कहते हैं कि यार तुम हो तो हम बैठ पा रहे हैं, थैंक यू सो मच, कभी कहते हैं नहीं। लेकिन अगर किसी दिन वो सोफा सेट आपके रूम से हट जाए तो फिर क्या होगा, अरे यार पूरी दुनिया हिल जाएगी उस थोड़ी देर के लिए आपकी, है ना, कहाँ बैठे क्या करें। और फिर आपको उसकी क्वालिटीज याद आएंगी, यार बड़ा सॉफ्ट था वो कोना था जिस पे हम बैठते थे, है ना। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में हमारे आसपास के लोग भी होते हैं। जब तक वो हमारी जिंदगी में रहते हैं हम उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब तक वो हमारी जिंदगी में होते हैं हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब वो नहीं रहते हैं तब हमें उनकी वैल्यू, उनकी क्वालिटीज, उनकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। आइए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिजवानी पर।

अच्छा, वक्त के बिना जबरदस्त किस्से हैं। ये वक्त जो है ये किसी कांच की टाइम पे कट नहीं रहा है, कोई काट नहीं पा रहा है ना, अकेलापन महसूस कर रहा है और किसी के पास जिंदगी जीने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए वक्त ही नहीं है। यूं तो हमारे कहने के लिए सब अपने हैं, सब हमारे आसपास खड़े होकर हमारे अच्छे वक्त में हमसे कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वाकई कौन हमारे साथ है ये हमें वक्त दिखा देता है। वक्त की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, चाहे आप लाख चाह लें, अगर आपका वक्त नहीं है तो आपको वो चीज नहीं मिलती है। तो हाँ, वक्त के हाथ में बहुत कुछ है मेरे दोस्त, इसलिए वक्त की कद्र करना सीखिए। आइए एक और ट्रैक सुनिए अभी सताक्षी के साथ इसी बात पर, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी 1701 AM पे।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

अच्छा, आपकी इस सुबह में सबसे खास बात क्या है? नहीं, बताइए मुझे, इस सुबह में, इस मॉर्निंग में सबसे खास चीज क्या है? मैं बताऊं, हमारी इस मॉर्निंग में सबसे खास चीज हम सबके लिए है कि हम अलाइव हैं, हम जिंदा हैं, है ना? हम जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, हम दुनिया को देख पा रहे हैं, हम एक बार फिर से रेडी हैं अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए। आप चाहे लाख कहें कि यार आज एक और मौका मिल गया है, आज तो ये मीटिंग है, आज मुझे ये प्रॉफिट होने वाला है, बट इन सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो ये है कि हम जिंदा हैं। ना हम जिंदा होते, ना आज वो मौके हमें मिलते, ना हमारी डील फाइनल होती, ना हमारे असाइनमेंट्स होते, ना क्लाइंट मीटिंग होती, सबका सब यहीं धरा रहता। तो बहुत खूबसूरत बात है कि आज आप अलाइव हैं, आप जिंदा हैं और जिंदगी के हर एक फेज को जीने के लिए रेडी हैं। तो थैंकफुल होइए ईश्वर के सामने, प्रार्थना कीजिए उनके पास जाके कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपको एक नया मौका दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

सुबह का सबसे फन इंसिडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है तो क्या जवाब होगा आपका? एक नई सुबह की शुरुआत? ना ना, ये फन इंसिडेंट नहीं है। ट्रैफिक? भाई वो तो रोज मिलना ही मिलना है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी मिल जाता है। और मुझे लगता है ट्रैफिक हमें तब ज्यादा मिलता है जब हम ऑलरेडी लेट होते हैं, है ना। बट सुबह का सबसे फनी इंसिडेंट है अपने अलार्म क्लॉक को बंद करना और ये सोचना कि अब तो इसने हमें जगा ही दिया, अब हम उठ जाएंगे, 2 मिनट बाद उठते हैं, और फिर वो 2 मिनट 1 घंटा बन जाना। लेकिन क्योंकि अलार्म आप बंद कर चुके हैं तो वो तो आपको दोबारा डिस्टर्ब करेगी नहीं, और आप जो सोच रहे थे कि अब नहीं सोएंगे, वो नींद कब इतनी गहरी हो गई कि आपको पता ही नहीं चला। उसके बाद बॉस जो हड़बड़ाहट मचती है, आय हाय। सुबह का सबसे फनी इंसिडेंट जो हम सबके साथ रोज होता है। तो भाई खुद का ख्याल रखिए, खुद के वक्त का ख्याल रखिए, और ये मान लीजिए कि आप टाइम से बिना अलार्म क्लॉक के नहीं उठ सकते, इसलिए उसे ऑफ मत कीजिए, भले ही 2-4 मिनट बाद का लगाकर छोड़ दीजिए दोबारा। एंजॉय कीजिए अगले ट्रैक को सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जब आप अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री को चेक करते हैं, अभी तक की लाइफ हिस्ट्री आपकी जो भी रही है, आप ये पाते हैं कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जो है वो आपने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ किया, सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज। और फिर लाइफ की एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आप ये सेट करते हैं कि भाई किसी की भी वजह से अगर हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर रही है, अगर हमारी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई अब उस बंदे को हम अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइफ में मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ होता नहीं है। तो चाहे आपको किसी को प्रायोरिटी देनी हो जिंदगी में, लव एंड रिलेशनशिप का मामला हो, अपनी मेंटल हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। चलिए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ अभी इसी बात पर, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम।

तो दोस्तों ये था आज का इट हैपेंस। जी हाँ, आज हमने बहुत मुकम्मल कोशिश की आपकी सुबह को हसीन, बेहतरीन और ताज़ा तरीन बनाने की। बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जो आगे भी जारी रहेंगी, आपसे हम मिलते रहेंगे, कुछ बातें होती रहेंगी, दिल के जज्बात बयां होते रहेंगे और हमारे आपके सपने खिलते रहेंगे। हर सुबह आपके लिए खास बनाने के साथ साथ अपने लिए भी स्पेशल बनाएंगे हमारे और आपके साथ इट हैपेंस के सफर में। लेकिन आज अब ये वक्त है इट हैपेंस को वाइंड अप करने का। सो चलिए आज के सफर से अब इजाजत चाहूंगी और इस वादे के साथ कि कल फिर से जरूर लौटूंगी। तो जब तक हम और आप मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट। समाज, संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति, संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
8: Hi, this is Amitabh Bachchan.
9: And you are listening to Radio Briswani.
10: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers.
9: And
10: you are listening to Radio Briswani.
11: Hi, this is Salman Khan. And
12: you are listening to Radio Briswani.
13: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
15: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
16: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
17: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
18: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

सत श्रीकाल जी, मैं संदेश आलोक शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो बरसानी 101.9 FM ते। जिला हो चुके हैं हुण तक ते हम खबरां दा, तां फिर चलो करते हैं शुरुआत। रुक करते पंजाब दे वल, जिते देश दे सब तो वड्डे 540 करोड़ दे मेडिकल ड्रग रैकेट मामले ते इक मुलजम दीपक भंडारी ने अमृतसर दी जेल विच खुदकुशी कर ली। तकरीबन 15 महीने पहले एनसीबी ने देश दे विच एक रैकेट फड़िया सी जो कि नशे दियां दवाईयां वेचण दा कारोबार करता सी। उस विच एक नाम दीपक भंडारी दा भी सामने आया सी जो कि 15 महीने तो अमृतसर दी जेल विच बंद सी। दीपक भंडारी दी अमृतसर दी जिला अदालत तो बाद हाईकोर्ट अते उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट विच जमानत रद्द हो गई सी। इस तो बाद लंबे समय तो मानसिक तनाव विच सी, जिस तो बाद उसने जेल दे विच परना पा के अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उधर अपने उपर हुए जानलेवा हमले तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल पहली बार स्टेज से गरछे एथिक रैली नूं संबोधन करते हैं। सुखबीर बादल ने कहा है कि पंजाब दे लोकां ने बादल परिवार नूं बेहद नजदीकी नाल देखिया। बादल परिवार दी पंजाब पंजाबियां ते पंजाबीयत प्रति की सोच है, यह समुचे पंजाबियों नूं पता है। सुखबीर बादल ने कहा है कि वड्डे बादल साहब ने पंजाब दी तरक्की खातर पूरी जिंदगी ला दी। पंजाबियों नाल बादल परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उन्हां गलत ताकतां ते दोष लगाउंदे होए कहा है कि बादल परिवार नूं खत्म करन लई पिछले 2 सालों तो बेहद साजिशां रचियां जा रही ने। 2 बार उन्हां ते जानलेवा हमले होए अते दोहां समयां विच गुरु घर विच ही हमले होए। ये हमले उन्हां ने करवाए जिहड़े सही मायने विच गुरु दुखी हन अते इन्हां दा रिश्ता किसे धर्म नाल नहीं है। उदे यूक्रेनी दे लंबी दूरी तक हमले करन वाले ड्रोन ने 1 महीने तो वध समय विच दूजी वार रूस दे सब तो वड्डे ऑनलाइन रिटेलर वाइडबेरीज नाल संबंधित एक वड्डे गोदाम नूं निशाना बनाया। स्थानक अधिकारियां ने दस्या कि हमले तो बाद लगी भयानक अग विच गोदाम पूरी तरह दे नाल तबाह हो गया। यूक्रेनी फौजां ने इस तो पहला 18 जुलाई नूं मास्को दे दक्षण पूर्व विच यूक्रेनी सरहद तो कई 100 किलोमीटर दूर टैम्बोव खेतर विच गोदाम ते हमला कीता सी, जिस विच 7 लोग मारे गए सन। उधर नेपाल चीन सरहदी खेतर विच बुधवार सवेरे पोटे कोशी नदी विच अचानक आए भयानक हड़ कारण भारी तबाही होने की खबर सामने आई। अचानक आए इस हड़ की लपेट विच आउण कारण उत्तरी रसूवा विच सरहदी चौकी ते तैनात नेपाल दे हथियारबंद पुलिस फोर्स दे 4 जवान लापता हो गए। एपीएफ दे बुलारे ने दस्या है कि जदों तो सरहदी खेतर विच हड़ आया उदों तो ही इन्हां 4 जवानां नाल कोई संपर्क नहीं हो सकिया। हालांकि उन्हां यह भी स्पष्ट किया कि सरहदी चौकी दे ढांचे नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचा, पर अधिकारी अजे इस गल का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लापता जवान हड़ की लपेट विच आए हैं या नहीं। दूजे पास स्थानक मीडिया दियां अणपुष्ट रिपोर्टा अनुसार रसूवा कस्टम दफ्तर के 14 कर्मचारी भी संपर्क तो बाहर दसे जा रहे हैं। उधर भारत विच कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर तो ऑपरेशन सिंदूर नूं लैके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली केंद्र सरकार ते निशाना साध्या है। कांग्रेस के जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने साबका सीडीएस अनिल चौहान के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी हालिया बयान ते सवाल खड़े कर दिते हन। कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लिखा है कि 3 मई 2025 सिंगापुर विच दिते गए एक मीडिया इंटरव्यू विच तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर बारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण खुलासे किए सन। सीनियर कांग्रेस नेता ने अगे लिखा है कि जनरल चौहान ने फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बयान दिते जिन्हां ने जायज चिंतावां पैदा कर दित्तियां ने। याद रखना जरूरी है कि 29 जुलाई 1999 नूं कारगिल युद्ध खत्म होने तो 4 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने के सुब्रमण्यम दे एक बयान दिता सी। कारगिल समीक्षा कमेटी सुब्रमण्यम दी प्रधानगी हेठ कारगिल समीक्षा कमेटी बनाई गई सी। कारगिल समीक्षा कमेटी दा हवाला दिंदे होए उन्हां पोस्ट विच अगे लिखा है कि इस कमेटी दी रिपोर्ट 23 फरवरी 2000 नूं संसद विच पेश कीती गई सी। इस दे नाल ही इंटरव्यू ते भाषणां विच कदे कदाई खुलासे भावें एक जानबुझ के रणनीति दा हिस्सा होण जां ना होण सुब्रमण्यम कमेटी वर्गी एक योजनाबद्ध ते व्यापक समीक्षा प्रणाली दा बदल नहीं हो सकता। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀ ਬਿਸੋਨੀ 101 FM। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: मोटा सतुआ।

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो 101.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सुलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का तुसीं की खाणा है तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो 101.1 FM सर फेसबुक पेज अजीत बिस्वानी @biswani.com साडी ईमेल आईडी है करिए जेड़ा तुम चंगा लगता अपना लो सा गलबात जरूर करो तो फटाफट के जुड़ना शुरू करो मैं हूं ही वापस आने कितने नहीं जाना थोड़े गलबात जरूर करते रहना बस तुम जुड़ना ना भूलो हूं वापस आई मैं तुम उन्होंने समा इन्होंने सोने जी कि इंजॉय करो

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल बने हुए। देखो शराब की लत हुंदी है ना जेड़ी, वह ना सिर्फ सेहत दे लई बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स का करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारिया ने इस लत तो बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी तो कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तो अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उन्हां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उन्हां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एक गीत।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए दस रही सीना मैं थानू के केड़े केड़े अजे सितारे है जिन्हों की जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो यो हनी सिंह दा हुंदा है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह दा शराब ते ड्रग दी लत नाल जूझना उन्हां दे करियर दा सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिसके कारण साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब हो गए सी। उन्होंने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा कि उह शराब ते नशीली दवाइयां विच बुरी तरह के नाल डुब चुके सी, जिस तों उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाने 104.1 FM ते संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम है गया वो है जी मनीषा कोइराला दा। ता मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मा विच अपनी एक्टिंग दा जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की थी, तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाने 104.1 FM संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम है गया वो है जी मनीषा कोइराला दा। ता मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मा विच अपनी एक्टिंग दा जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की थी, तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है, तो बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

Mixing in the house. हाँ जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मानी वंशन वाले हम तो चार छह संदेश अलग दिन से बने हुए हैं। अगला जेड़ा नाम है गया ना उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे क्योंकि वो पट खानदान के नाल जुड़े हुए है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना, ते ना है शाहीन भट्ट, नाम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे, पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई सी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन, जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
5: बियॉन्ड व्हाट यू सी Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसर वाले ते जी आर चे संदेश अलग दिन आज से बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुरानी 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्हों का नाम है इस लिस्ट विच शामिल। बॉलीवुड दी दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब दी लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इस करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो कि परवीन बॉबी अपने समय की हिट एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारिया शानदार फिल्मा दित्तियां ने, उन्होंने खूबसूरती का जलवा तो अज भी बरकरार है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वन सर वन एम से जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम होना था है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्हों के करियर के गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान को रीहैब जाना पै गया से जिस नाल उन्होंने करियर को झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर और समिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो यह सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में शामिल है।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: अभी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हाँ देखो, जिन्ने भी नाम मैं हुण दस्से हैगे ने ना, वो नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने, सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स हैगे ने। तुहानू कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किस दा तुहानू लगता है कि वो जिहड़ा समा उहनां दा खराब गया हैगा वो नहीं जाना चाहीदा सी, ते जो शराब दे नशे दे विच ना डुबदे ते उस टाइम नू ना बर्बाद करते तां अज होर ज्यादा उपर होने सी। तो दसो जरूर, तुसी जुड़ो साडे नाल रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज है जिते ब्रिस्वानी@ब्रिस्वानी.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए जेड़ा भी तुहानू चंगा लगता है तुसी अपनाओ, पर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तो तुहानू यही कहना है जी कि कल करदे हां मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड, प्रीपेड चार्ज कार्ड, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों कैसे हो और आप और कैसा फील कर रहे हो। सबसे पहले माफी चाहते हैं, थोड़ी सी देरी हो गई आने में, लेकिन ऑफकोर्स उसके पीछे रीजन है तकनीकी खराबी, और वो तकनीकी खराबी को हमने सॉल्व कर दिया है और अब हम आपसे मिलने के लिए, आपके लिए एक बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वेल, प्रोग्राम में गाने अच्छे होते हैं और तराने भी अच्छे होते हैं, और तो और जो मैं आपको किस्से सुनाती हूँ वो भी अच्छे होते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और प्रोग्राम की शुरुआत होगी कैसे, वेल ऑफकोर्स एक हेल्दी रिचुअल के साथ जो हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से जाए, हम अच्छे से आपको एंटरटेन करें, अच्छे से हम आपको हैप्पी हैप्पी फील करवाएं। और अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है काम की वजह से या ऐसे किसी और वजह से, तो वो भी हम उसमें निजात पाने में आपको मदद कर पाए। जी हाँ, तो सबसे पहले आइए करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अब जरा करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और वो भी एक बढ़िया से गाने के साथ। गाना है दिलदारा, जो कि रावण मूवी का है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, तो इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। तो अब जरा मौसम की बात कर ली जाए, क्योंकि मौसम की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और कितना रहने वाला है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट। 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और अभी की अगर बात की जाए तो 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 21.8 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, पिछले कल के मुकाबले जो है वो तापमान में गिरावट आप देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन बारिश है, और वो हम सबको पता है, वो जो झमाझम बारिश हुई है वही रीजन है। जी हाँ, तो ये तो हुई दिन की बात। रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे, और एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। जी हाँ, ऑल्दो आज भी कुछ जगहों पर बारिश होती हुई मुझे 5 बजे तक नजर आ रही है, मतलब कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होगी, लेकिन बाकी इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे बारिश का नामो निशान नहीं होगा। सो ऑफकोर्स ऐसी सिचुएशन है यहां पर। अब अगर कल की बात की जाए यानी कि फ्राइडे की बात की जाए, तो फ्राइडे को अगेन 20% चांसेस है बारिश होने के विद 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, बट आसमान मुझे ऑलमोस्ट साफ दिख रहा है, तो वो थोड़ी बहुत बारिश कुछ इलाकों में, जैसे मैंने कहा, बूंदाबांदी हो सकती है, बस उसके अलावा बाकी सब ठीक रहेगा। बट देन अगेन, आपको छातों के बिना बाहर नहीं जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज यू नेवर नो, जिस इलाके में आप हो या जहां आप जा रहे हो वहां बारिश हो सकती है, राइट। इसी के साथ सैटरडे की अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 40% चांसेस बारिश होने के, तो अगेन रेडी रहिए बारिश के लिए। बीच में आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है एक दिन, लेकिन फिर से बारिश मिलेगी। ऐसा ही मौसम जो है मैं अगले कुछ 7 से 8 दिन तक मैं देख पा रही हूं। बीच में बारिश होगी, बीच में क्लियर होगा, बीच में फिर से बारिश होगी, बीच में फिर से मौसम क्लियर होने वाला है। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, और फिर करेंगे हम और बहुत सारी बातें।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया है और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको घर से बाहर कैसे निकलना है वो भी हमने आपको सजेस्ट कर दिया। अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, मतलब वो पार्ट, वो एस्पेक्ट हमारे इस प्रोग्राम का जो सबसे ज्यादा खास है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स, मतलब आप अपने गानों के साथ जो कि आप रिक्वेस्ट करते हो, कभी कभी डेडिकेट करते हो किसी को, उनसे जो चार चांद लगते हैं हमारे प्रोग्राम में उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सो आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो, डेडिकेट भी कर सकते हो, किसी को स्पेशल भी फील करवा सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज डायल नंबर और वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से आ जाइए और कर दीजिए अपने गाने वो फरमाइश जो आपको बहुत ज्यादा अजीज है। और ये रहा मेरी तरफ से एक और जबरदस्त सा गाना।

0: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट जो है वो चाइना में गेम्स खेल रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कभी कभी वेट लिफ्ट भी कर रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट्स इन इंडिया कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प चीज। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या निविया। सो एक मॉल की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं, एक रेड कार्पेट बिछा हुआ है और एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि लिटरली ओनम के मौके पर डांस परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो डांस कर रहा है, वो कथक और वो सारे के सारे क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि साउथ इंडिया की पहचान है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ओनली इंडियंस कैन मेक रोबोट्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब हम पूरी डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी कंट्रीज हैं इस दुनिया में उनसे कितने ज्यादा अलग है, मतलब वो रोबोट से कुछ अलग अलग खतरनाक सी चीजें करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि रोबोट हो या इंसान, हम तो निचाएंगे भाई। अगर तुम रोबोट हो तुम तब भी नाचोगे, अगर तुम इंसान हो तुम तब भी नाचोगे, और डांस तो करना पड़ेगा। अगर तुम इंडिया में आए हो तो डांस तो करना पड़ेगा, और ऊपर से ओनम का मौका, मतलब उसे बड़ी ही प्यारी सी एक लुंगी पहनाई हुई है ऑरेंज कलर की, और लोग जो है वो वहां पर उसे देख बैठ कर देख रहे हैं, वो बड़े ही मजे से कुछ कुछ डांस करने की कोशिश कर रहा है, अपने हाथ हिला रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि बाकी सारी कंट्रीज रोबोट से बड़ी खतरनाक डेडली चीजें करवा रहे हैं, है ना, चाइना ने तो क्या क्या नहीं करवा दिया, लेकिन इंडियन लोग कह रहे हैं कि देखो मजा जो है वो सबसे ऊपर है, जिंदगी में रस होना चाहिए, काम तो होता ही रहेगा, सो रोबोट्स भी इस मजे से अछूते क्यों रहे। जी हाँ, आप मुझे बताइएगा कि आपने भी ये वीडियो देखी है या नहीं देखी, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। जब मैंने इसे पहली बार देखा है, व्हाट इज हैपनिंग, और मैं इतनी ज्यादा जोर से हंसी कि सब मुझे देख रहे थे कि क्या हुआ निव्या, आर यू ओके, लाइक आर यू ऑल राइट, एंड आई वाज लाइक या आई एम, बट इंडियन पीपल्स गॉट नो चिल। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: जिसको छुआ इसने वो जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ जेफ बेजोस जो है वो अपनी एक स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं, और लाइमलाइट अगर हम बुरे बे में बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि अच्छा ऐसा क्या कर दिया जेफ बेजोस ने। जी हाँ, सो जेफ बेजोस ने अपेरेंटली ये कहा है कि ह्यूमंस जो है वो ज्यादा वाटर कर रहे हैं, इसलिए हमारे AI के लिए ज्यादा पानी नहीं बच रहा है। ह्यूमंस जो है वो ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा पानी पी रहे हैं, इसलिए हमारे AI के लिए पानी नहीं बच रहा है। यू नो व्हाट, हमारे AI में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये ह्यूमंस की वजह से हो रहा है कि हम AI का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ज्यादा पानी पी रहे हैं। अरे भाई, इंसानों के लिए ही होता है पानी, क्रीचर्स के लिए, ये जो जीव जंतु हैं इनके लिए और इंसानों के लिए ही पानी बना है। जी हाँ, पीने के लिए पानी बना है, AI के इस्तेमाल के लिए नहीं बना है। मतलब आप द ऑडासिटी ऑफ दिस पर्सन कि ये बोलना, मतलब AI डेटा सेंटर्स इतना ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, वो लिटरली ह्यूमंस के रिसोर्सेस को खत्म कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को, वो अलग बात है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। बट ये कहना एंड द ऑडासिटी ऑफ सेइंग इट कि यू नो व्हाट, इंसान जो है ना वो जरूरत से ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो अब क्या पानी का फास्ट रख लें क्या, व्रत कर लेंगे पानी का क्योंकि आपके AI को पानी चाहिए। आई वॉज लाइक, जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी मैं तो ऐसे हो गई थी कि इस इंसान को मार्स भेज दिया जाए और इसको बिना पानी के रखा जाए और इसको बोला जाए कि तेरा सारा का सारा पानी AI पी गया, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है बच्चा, कुछ नहीं बचा है क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा पानी AI पी गया है। जी हाँ, आई मीन कहां से आते हैं ये लोग, कहां से? मतलब ये कहना कि ह्यूमन वाटर कंजम्पशन इज लिमिटिंग एआई'स पोटेंशियल, लाइक द ऑडासिटी. जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, तो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे आंखों के सामने एक मीम आता है जो कि इतनी सेंस बना रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ मेरे या मुझ तक रखना जो है वो अच्छा नहीं होगा, मेरे लिसनर्स के साथ इसे शेयर करना होगा क्योंकि विजडम तो है भाई बात में। जी हाँ, तो वहां पर लिखा हुआ था कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन न्यू क्लोथ्स। जी हाँ, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन न्यू क्लोथ्स, इंस्टेड विजिट न्यू कंट्रीज वेयर पीपल हैवंट सीन योर ओल्ड क्लोथ्स। It's as simple as that. मतलब, why do you have to spend so much money on new clothes, right? You just have to go to some new countries. That's it. आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, तुम चवन्नी बचाने के लिए रुपया खर्च करवा रही हो। और अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या जो है कहावत बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि तुम एक डॉलर बचाने के लिए $100 लगवा रही हो। जी हाँ, मतलब बात तो वही है, पर द थिंग इज कि सी, जब भी कोई आपको आपकी शॉपिंग के लिए कुछ कहता है ना, तो आप ये कह दो कि ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं शॉपिंग ना करूं, जैसे हस्बैंड्स होते हैं बहुत ज्यादा, काफी सारे हस्बैंड्स होते हैं जो कि अपनी वाइफ की शॉपिंग से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे फिर से पैकेज आ गया, फिर से शॉपिंग, अरे यार तुम्हारे को शॉपिंग ही करनी होती है क्या, मतलब तुम्हें शॉपिंग के अलावा कुछ दिखता नहीं है, कभी कभी सेविंग भी कर लिया करो। अगर आपके हस्बैंड भी ऐसा बोलते हैं तो आपको उनको यही बोलना है कि ठीक है, आई एम नॉट गन बाय न्यू क्लोथ्स, आई एम गना गो टू सम न्यू कंट्रीज, क्योंकि अगर मैं यहीं पर पुराने कपड़े पहनती रहूंगी तो बात नहीं बनेगी ना, तो मैं नए कपड़े नहीं लूंगी, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें मुझे नई कंट्री लेके जाना होगा, दैट्स इट, और फिर मेरे पुराने कपड़े वहां पर नए हो जाएंगे, तो मतलब मुझे नए कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, जस्ट टेक मी टू ग्रीस, दैट्स इट, या दैट्स ऑल यू नीड टू से। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये फरमाइशी गीत आया है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर अमला जी की तरफ से, और ये गीत एग्जैक्टली गीत नहीं है बट ये गजल है। जी हाँ, और ये गजल है महान महान सिंगर जगजीत सिंह जी की। जी हाँ, मतलब इनकी गजलें तो आपको इतनी अच्छी लगती है, खासकर कोई भी पार्टी हो और एक मतलब महफिल सी बनी हो तो इनकी गजलें आपको बहुत अच्छा फील करवाती है। ऑफ कोर्स कभी कभार आपको रियलिटी चेक भी देती है, बट अगेन जगजीत सिंह जी इज अ लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी सिंगर। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, प्यार देने के लिए हमारे प्रोग्राम को। बिना देर किए आपके लिए यही गजल सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, बात में दम तो है। जी हाँ, थैंक यू सो मच, ये रहा आपका गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट। समाज, संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति, संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त, 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है खबरों की तरफ रुख करने का। सबसे पहले खबर नेपाल से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा बुरी है। नेपाल में तिब्बत की तरफ से बाढ़ आई है और उसने लोगों को अपनी साथ बहा दिया है। जी हाँ, मतलब उस बाढ़ ने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लोग जो है लापता हो गए हैं। इनफैक्ट अगर से भारत के लोगों की बात की जाए तो 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। जी हाँ, नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में 162 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपदा प्रभावित इलाके तक राहत और बचाव दलों के पहुंचने में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक सैकड़ों पर्यटक अब भी लापता हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारत के भी करीब 300 लोग लापता हैं, जबकि अब तक ये जानकारी सामने आ रही थी कि 130 के आसपास भारतीय लापता हैं। इसके अलावा अमेरिका के 54, ऑस्ट्रेलिया के 34 और ब्रिटेन के 33 नागरिक भी लापता हैं। आपदा के बाद कई देशों ने नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और भारत ने सहायता का ऐलान किया है या राहत सामग्री भेजी है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ ये जो बाढ़ है ये तिब्बत की तरफ से आई और वो इतनी जल्दी आई कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको देखनी चाहिए और फिर हमें रियलाइज होगा कि कैसे हमारी लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा, मतलब नोबडी नोज कि अगले ही पल क्या होगा। सो ऐसे में हर एक वक्त जो है, हर एक पल जो है, हमें अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इतने सारे लोग जो लापता हो गए हैं, जो घूमने गए थे, इनफैक्ट इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहां पर जाकर वो उनकी जिंदगी का आखिरी वेकेशन हो सकता है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेपाल बाढ़ की बात हो रही है, खबरों की बात हो रही है और मंजर कुछ अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सो नेपाल को राहत और बचाव कार्यों के लिए अमेरिका देगा $5 लाख। जी हाँ, नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद अमेरिका ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख यानी कि $500,000 की सहायता देने का ऐलान किया है। इस राशि का इस्तेमाल

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए इमरजेंसी शेल्टर देना, पानी और अन्य जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराने में किया जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। विभाग ने कहा कि इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अमेरिका की संवेदनाएं हैं। बाढ़ के बाद सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कम से कम 54 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक बताए गए हैं। जी हाँ, वहीं नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने भी मदद भेजी है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए भारत ने 10 टन मानवीय मदद भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार देर रात को बताया कि भारत की ओर से भेजी गई ये सहायता नेपाल को सौंप दी गई है। रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम नेपाल के साथ हमेशा खड़े हैं। राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारत की ओर से 10 टन मानवीय मदद नेपाल के सांस्कृतिक पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री खड़ग राज पोडेल को सौंपी। यह मदद विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत कार्यों में सहायता करेगी। उन्होंने लिखा कि भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने भी यही जानकारी एक्स पर साझा भी की। जी हाँ,

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नेपाल की बाढ़ में नुकसान भी कुछ कम नहीं हुआ है। जी हाँ, इंसानों का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन जो माली नुकसान है वो भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ से सड़क और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक बाढ़ से 15 अरब नेपाली रुपए का नुकसान हुआ है। सड़क विभाग के डायरेक्टर जनरल विजय जैसी ने बीबीसी नेपाली से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि बाढ़ के कारण अब तक 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। उनके मुताबिक नुकसान का आकलन अभी शुरुआती स्तर पर है और इसके बढ़ने की आशंका है। पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कई इलाकों में सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। संपर्क बहाल करने के लिए प्रभावित स्थानों पर गुरुवार से बेली ब्रिज यानी कि एक पोर्टेबल और मॉड्यूल स्टील पुल लगाने का काम शुरू किया जाएगा। विजय जैसी ने बताया कि नेपाल के पास बेली ब्रिज उपलब्ध है, इसके अलावा भारत और चीन से भी बेली ब्रिज उपलब्ध कराने की अपील की गई है। सड़क विभाग के मुताबिक सिया ब्रुबेसी और रसुवा गढ़ी के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। पिछले साल आई बाढ़ के बाद चीन की मदद से इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जा रहा था, हालांकि एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आने से यातायात बाधित हो गया है। वहीं गालछी बैरनी सड़क खंड भी बाढ़ के कारण बंद है। अधिकारियों के मुताबिक सड़क पर जमा मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
12: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
15: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. तो दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर और एक चीज जो है, एक खबर जो है वो अमेरिका से आ रही है और वो खबर जो है वो एग्जैक्टली खबर नहीं है लेकिन फिर भी खबर है. आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा पहले डिसाइड कर लो कि खबर है या नहीं है. वेल, अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया है. आप लोग बोलोगे कि अमेरिका तो हर किसी पर आरोप लगाता ही रहता है, पर चाइना पर अगर आरोप लगाया तो कहीं कहीं सही होगा या इसकी गुंजाइश है. सो अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाया कि पिछले 8 साल से चाइना जो है वो अमेरिका के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है. जी हाँ, फिर चाहे वो वहां का सेनेट हो, फिर चाहे वो नासा हो, फिर चाहे वो और जगहें क्यों ना हो. जी हाँ, पेंटागन इनफैक्ट भी चाइना के रडार में था. अब आप लोग बोलोगे कि यार कैसा अनाड़ी कंट्री है, मतलब 8 साल से ये हैकर्स जो है इनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले और ये 8 साल से कुछ कर ही नहीं पाए. वेल, इसके लिए हमें कहना पड़ेगा कि चाइना कुछ ज्यादा ही तेज है और चाइना की हैकिंग वाली पॉलिसी जो है वो सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है बल्कि वो और भी बहुत सारी कंट्रीज को हैक करने की कोशिश करता रहा है. उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है. ऑस्ट्रेलिया पर भी ऐसी चीजें करने की कोशिश होती रही है चाइना के द्वारा, फिर चाहे और कंट्रीज हो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है. सो ऐसे में अमेरिका का ये कहना कि चाइना ने नासा को, सेनेट को और बहुत सारी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को हैक करने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने कहा पेंटागन भी उसमें शामिल है, तो ऐसे में चाइना जो है वो कह रहा था कि अच्छा सबसे पहले तो आप सबूत लाओ, और अगर आप सबूत नहीं मिला रहे हो तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप इतने अनाड़ी कैसे हो कि 8 साल से आप कुछ कर ही नहीं पाए। मतलब हैकर्स जो है वो आपको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में आप कर ही नहीं पाए कुछ। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो क्या चाइना हैक करने में कामयाब हुआ या नहीं। वेल, अमेरिका की तरफ से ये कहना है कि काफी बार हुआ और काफी बार नहीं हुआ। मतलब देयर वर टाइम्स जब चाइना ने लिटरली अमेरिका के गले को पकड़ लिया और फिर उसके बाद जो है उसे छोड़ा या नहीं छोड़ा, दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। बट द थिंग इज कि अमेरिकी सिस्टम भी सेफ नहीं है। आप लोग बोलोगे कि अमेरिकी सिस्टम तो वैसे भी मतलब एकदम पूरा हवा बनाया हुआ है, एज सच कुछ है नहीं लिटरली। वो तो बहुत सारी कंट्रीज के लोग मिलकर आकर अमेरिका में जाकर उन कंपनीज को इतना ज्यादा कामयाब बना रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ अमेरिकन लोगों की बात होती तो उनके बस का कुछ भी नहीं था, एंड उसमें बहुत ज्यादा दम है। बट ये कहना कि चाइना पिछले 8 साल से हमें हैक करने की कोशिश कर रहा है और वो काफी बार कामयाब हुआ काफी बार नहीं भी हुआ, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अब ऐसे में चाइना क्या करेगा, चाइना को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना भी लाइक यू नो व्हाट, मुझे जितनी तुम्हारी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी है, सो तुम कुछ भी बोलोगे मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड ये इतनी हद तक बढ़ गया है कि अमेरिका ने कहा था कि ईरान पर जो सेंक्शंस लग रही हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई हैं, ऐसे में जो भी कंट्री उसके साथ ट्रेड करेगी कोई भी राबता रखेगी उसके साथ अच्छा नहीं होगा। पर चाइना भी लाइक यू नो व्हाट, डू व्हाटएवर यू वांट, यू कांट डू एनीथिंग फ्रॉम टू मी, और मैं पूरी तरह से करने वाला हूं ईरान के साथ। तो चाइना खुल्लम खुल्ला ट्रेड कर रहा है ईरान के साथ और अमेरिका उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है, ये कैसे हो रहा है क्या आप गेस कर सकते हैं। वेल ऑफकोर्स ये रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स की वजह से हो रहा है। रेयर अर्थ मेटल्स जो कि चाइना के पास भरपूर मात्रा में है और अमेरिका के पास नहीं है, इतनी क्वांटिटी में है चाइना के पास कि अगर वो चाहे तो लिटरली उनके रीढ़ की हड्डी जो है वो बेंड कर सकता है। अब आप लोग बोलोगे अच्छा ऐसा कैसे। वेल, रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो हर जगह यूज होते हैं, चिप्स बनाने में यूज होते हैं, मतलब उसके बिना आपकी ईवीज नहीं बन सकते, उसके बिना आपके वेपन्स नहीं बन सकते, उसके बिना आपके फोन्स नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकता। चिप बनाने के लिए आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए और वो चाइना से आते हैं क्योंकि चाइना कि मोनोपोली है उसमें। सो ऐसे में अमेरिका कुछ भी कहे कि ईरान के साथ वॉर करोगे या ईरान के साथ ट्रेड करोगे तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वेल वो किसी और कंट्री के साथ बेशक कुछ कर पाए लेकिन चाइना के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और आप खुद सोचिए, चाइना ने 8 साल से इनको हैक करने की कोशिश की है और वो कर भी पाया काफी बार, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिका इज नॉट अ सुपर पावर एनीमोर, आई थिंक या दैट विल बी द कंक्लूजन। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

0: दोस्तों इसी के साथ लेट्स टॉक अबाउट मेटा, लेट्स टॉक अबाउट मार्क जुकरबर्ग। वेल ऑफ कोर्स वो अपनी प्रॉपर्टीज में तो एड ऑन कर ही रहे हैं नई नई जगहों को, लेकिन यहाँ पर उनको भारी फटका लगा है। एंड व्हेन आई से भारी फटका, आई एम टॉकिंग अबाउट $18 billion। या वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस, बी फॉर बिलियन। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों? वेल, उन पर यानी कि मेटा पर केस किया गया था 48 यूएस स्टेट्स के द्वारा, जहां पर उनका क्लेम था कि मेटा ने जानबूझकर बच्चों को आदतें खराब करने के लिए, उनको ज्यादा सोशल मीडिया की लत लगने के लिए ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जिससे वो ज्यादा एडिक्टेड हो जाए और वो चीज बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, तो 48 यूएस स्टेट्स ने ये क्लेम भरा था, एंड गेस व्हाट, वो केस वो जीत गए हैं, एंड मेटा रेडी हो गया है $18 billion पेमेंट पे करने के लिए। जी हाँ, यूएस सेटलमेंट ओवर क्लेम्स इट्स प्लेटफॉर्म हार्म चिल्ड्रन। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि सीधा हार्म कैसे करता है? वेल, सीधा हार्म नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ा क्लेम था वो यही था कि मेटा ने अपनी सोशल मीडिया साइट्स को ज्यादा एडिक्टिव बनाया, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं, वो और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और ये चीज उनके भविष्य को खराब कर सकती है। एंड दैट वॉज द क्लेम, गेस वॉट, दे वन, दे वन। जी हाँ, और मेटा जो है यानी कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो $18 billion जो है वो पे करने वाले हैं। आई नो। जी हाँ, सो मेटा जो है वो ये जो पेमेंट मेटा जो है वो करने वाला है वो इंस्टॉलमेंट्स में करने वाला है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 10 years। जी हाँ, आपने सही सुना, और एक साथ नहीं होगा। सो $18 billion एक साथ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 10 साल में भी अगर एनुअल पेमेंट्स के तौर पर मिलेगा तो $1 billion से ज्यादा मेटा जो है वो हर साल पे करने वाली है, विच इज क्वाइट गुड। लेकिन क्या उसका फायदा बच्चों को होने वाला है या लोगों को होने वाला है, दैट्स समथिंग आई थिंक अभी भी क्लैरिटी उसके बारे में नहीं है। जी हाँ, सो ऐसे में जब भी ऐसा कोई लॉ सूट होता है, उसका सीधा सीधा फायदा क्या लोगों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, वो नहीं होता है हमेशा ऐसा। लेकिन एनुअल पेमेंट्स जो है वो मेटा की तरफ से की जाएंगी, और 48 स्टेट्स जो है वो जीत गई हैं अपनी बिडिंग को, और यहां पर मेटा को झटका लगा है, और झटका नहीं फटका लगा है। वेल, $18 billion इज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट आई वुड से, एंड या बट मेटा बहुत अमीर है, सो आई गेस दे कैन पे दैट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: वो मरती थी नजरें झुका के, शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक और फरमाइशी गीत प्ले करने का। ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है कहो कहाँ चले। जी हाँ, जहाँ तुम ले चलो। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। और मैं तो कहती हूँ मेरे लिसनर्स की फरमाइशों में जो दम है वो तो दम आलू में भी नहीं है, और ये पक्की बात है। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वैसे तो वक्त हो गया है हमारा ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू करने का, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हमें करना है और वो काम दिया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर की तरफ से। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी हमारे इस नेटवर्क के साथ नए लोग जुड़ते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। सो हमारे नए लिसनर हैं जो कि आई हैं हमारी एक बहुत ही पुरानी लिसनर की तरफ से, और वो नई लिसनर हैं और उनकी तरफ से एक फरमाइश है, बल्कि एक डेडिकेटेड सॉन्ग है जो कि वो डेडिकेट करना चाहती हैं अपने हस्बैंड को, उसी को हमें प्ले करना है और वही काम हम करने वाले हैं। सो अनीता जी, जो कि हमारी बहुत ही खास विनी जी की सिस्टर हैं, वो अपने हस्बैंड जिमी जी को डेडिकेट कर रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। जी हाँ, और वो गाना है दिल का रिश्ता बड़ा ही। आहा हा, आई नो, अगर मैं गाऊंगी फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं गाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बट थैंक यू सो मच विनी जी, हमेशा की तरह प्यारी प्यारी चीजें तो आप शेयर ही करते ही हो, लेकिन नए नए लिसनर्स भी आप हमारे लिए लेकर आ रहे हो, क्या बात है। और मैंने जैसे कहा कि जब भी नए लोग हमारे इस नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर योर रिक्वेस्टेड सॉन्ग, और ये डेडिकेटेड सॉन्ग आपके हस्बैंड तक जरूर पहुंचेगा विल मेक श्योर. जी हाँ, सो जिमी जी के लिए उनकी वाइफ अनीता जी ने किया है ये गाना डेडिकेट, जिसका नाम है दिल का रिश्ता. सो थैंक यू सो मच. ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा ये खूबसूरत सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अगर आप ये सोच रहे हो कि निव्या शर्मा कितनी देर हो गई, अब ओल्ड इज गोल्ड के लिए थोड़ा सा वक्त बचेगा, वेल टेंशन मत लीजिए क्योंकि आज प्रोग्राम कुल 10 मिनट की देरी से शुरू हुआ था तो 10 मिनट की देरी से ही खत्म ही होगा, मतलब 10 मिनट आगे जाने वाला है प्रोग्राम, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास फरमाइश करने के लिए पूरा पूरा वक्त है और नाउ वी आर गोइंग टू ऑफिशियली यू नो स्टार्ट द आर फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट विच इज ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, सो ओल्ड इज गोल्ड जो है वो खूबसूरत है और ओल्ड इज गोल्ड जो है वो पुराने गानों से भरा हुआ है। ओल्ड इज गोल्ड जो है वो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और ये खूबसूरत सा सेगमेंट जो है वो हमारे दिल के हमेशा करीब रहेगा, नॉट जस्ट माइंड बट मेरे लिसनर्स के भी। जी हाँ, मतलब उनको इंतजार रहता है इस सेगमेंट का एंड वी लव दैट। सो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ और ये गाना जो है वो बहुत ही प्यारा है और कल ही की बात है मैं राज कपूर की एक मूवी देख रही थी अपनी मम्मी के साथ और वो मूवी जो है वो जबरदस्त थी, अच्छी थी। मतलब कुछ चीजों को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों हो रही है, बट एक चीज पक्की बात थी और वो थी राज कपूर की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। सो मैंने सोचा कि राज कपूर के किसी गाने के साथ अगर शुरुआत की जाए आज की तो बढ़िया सा रहेगा एकदम समाज। जी हाँ, सो जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है बहुत ही खूबसूरत सा, वो चांद खिला वो तारे हंसे। जी हाँ, मैं गाने नहीं वाली हूँ, सो डोंट वरी। इसी के साथ सेगमेंट की शुरुआत होगी, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो रहा है। अपनी फरमाइश जो कि पुराने गानों से रिलेटेड है उसको लेकर जल्दी से आप भी सवार हो जाइए।

जी हाँ दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि अनारी जो ये गाना था, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और ये गाना जो है वो राज कपूर की पिक्चर का है। अब राज कपूर की पिक्चर्स की जब भी बात होती है तो बहुत सारी पिक्चर्स है जो कि आपको याद रहेंगी हमेशा, फिर चाहे वो मेरा नाम जोकर हो, फिर चाहे वो श्री 420 हो, राइट। ये बहुत सारी मूवीज हैं जो उन्होंने इतनी ज्यादा जबरदस्त की हैं कि लोग इनको भुला पाएं ये मुमकिन है नहीं। जी हाँ, कल ही की बात है, जैसे मैंने आपके साथ कहा कि मैं अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और हम मूवी देख रहे थे। बेसिकली मेरी मम्मी मूवी देख रही थी, उसके साथ फिर मैंने उन्हें ज्वाइन किया। सो ये मूवी है दीवाना। जी हाँ, अब आई डोंट नो आपने इस मूवी को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन दीवाना जो है ये मूवी है, ये 1967 में आई थी और इसे महेश कोल ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ, इसमें राज कपूर है, इसमें सायरा बानू है और इसमें ललिता पवार भी है। अब शंकर जयकिशन ने इसका म्यूजिक दिया, सो ऑफ कोर्स म्यूजिक जो है वो बहुत ही खास है, और क्योंकि राज कपूर इस मूवी में थे तो राज कपूर की आवाज मुकेश जो है वो हमेशा से बनते आए हैं, तो मुकेश ने उनके लगभग सारे के सारे गाने जो हैं वो गाए हैं। अब कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जी हाँ, दीवाना जो कि एक बंदा है और वो बड़ा ही ज्यादा मासूम सा, बड़ा ही ज्यादा प्योरिटी से भरा हुआ इंसान है। मतलब अगर आप उससे दिल मांगोगे तो वो दिल दे देगा, अगर आप उससे जान मांगोगे तो वो जान दे देगा। और उस किरदार को उतार पाना राज कपूर के लिए, मतलब क्या बाकमाल तरीके से उन्होंने उस किरदार को जो है वो उस पर्दे पर उतारा है। जी हाँ, सायरा बानू के साथ उन्हें मोहब्बत होती है। सायरा बानू बहुत ही रिच खानदान से होती है और उनके साथ, उनके पिता के साथ के जो काम करने वाले थे, जो उनके पार्टनर होते हैं, वो उनकी शादी करवाना चाहते होते हैं किसी बंदे के साथ। लेकिन यहां पर राज कपूर को ये नहीं पता होता है कि उनके पिता कौन है, और जो पिता होते हैं वो विलन होते हैं। बेसिकली अब अगर मैं आपको ज्यादा बोलूंगी तो शायद आपके लिए ये मूवी स्पॉइल हो जाएगी, मैं कहूंगी कि आप खुद ही देख लें इस मूवी को। बट द हाईलाइट वॉज कि राज कपूर जो है वो इतनी इनोसेंस से उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, मैं तो दीवाना हूँ, हाथ जोड़ रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि मेरे पिता वो हैं तो अपने पिता के लिए वो क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जी हाँ, और गाना गाते हैं बहुत ही साफ, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो जो ड्रेसअप होता है उनका, मतलब आई थिंक द हाईलाइट वॉज द ड्रेसअप बिकॉज इट वॉज सो फनी। वो दिखाने की कोशिश की गई है कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल मासूम है, उसे पता नहीं है दुनिया के मैल का, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कोई उसे कुछ कहेगा तो वो बिलीव कर लेगा, वो मान जाएगा, वैसा ही कैरेक्टर उन्होंने पर्दे पर उतारा है। लेकिन एक चीज जो और हाईलाइट हुई मेरे लिए इस पिक्चर में वो ये थी कि सायरा बानो और राज कपूर के बीच बहुत बड़ा एज गैप है, और वो एविडेंट था। इनफैक्ट जिस बंदे ने उनके पिता का कैरेक्टर प्ले किया था वो उनसे छोटा लग रहा था, राज कपूर बड़े लग रहे थे, और यही होता था पुराने जमाने में। जी हाँ, बड़े बड़े एक्टर्स जो है छोटी छोटी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर लेते थे एंड इट वाज ऑल फाइन, बट राज कपूर की एक्टिंग डेफिनेटली काबिले तारीफ। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही जबरदस्त सा किस्सा है, और ये किस्सा है उस गाने से रिलेटेड जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। आ जा मैं हूँ प्यार तेरा। जी हाँ, इसी गाने की बात हो रही है। अब आप लोगों को पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये गाना रफी साहब और आशा जी ने मिलकर गाया, मतलब ये ड्यूएट है जो कि आशा जी ने और रफी साहब ने गाया है। लेकिन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी तो वहां पर नासिर हुसैन साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं शर्त लगाता हूं कि ये गाना जो है ड्यूएट है, लेकिन इसे ज्यादा अच्छे से जो है क्रिएटिविटी के साथ जो है वो रफी साहब गाएंगे। लेकिन वहीं पर पंचम दाई यानी कि आरडी बर्मन भी बैठे हुए थे, और वो कहते हैं कि नहीं, आप रफी साहब पर शर्त लगा रहे हैं और मैं शर्त लगाता हूं आशा पर, मुझे लगता है कि आशा ज्यादा अच्छा गाएगी। जी हाँ, और उस वक्त 500-500 की शर्त ये लगी थी नासिर हुसैन साहब और साथ में पंचम दा के बीच में। बस फिर क्या है, साहब जब जाती हैं रिकॉर्डिंग करने से पहले, मतलब रिकॉर्डिंग करने जाना होता है रफी साहब को और आशा जी को, उससे पहले वो लता जी के कमरे में जाती हैं। जी हाँ, मतलब जब आशा जी को ये रिकॉर्डिंग करने जाना था उससे पहले वो लता जी के कमरे में जाती हैं और लता जी को बोलती है, दीदी ऐसे ऐसे करके ये शर्त लगी है और ये गाना है और मुझे गाना है, लेकिन मुझे मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक तो गा पाऊंगी या नहीं। तो सामने से लता जी बड़े ही अच्छे से बोलती हैं अपने वो धीमे धीमे वाले स्टाइल से, आशा तुम पहले ये याद रखो कि तुम मंगेशकर पहले हो और भोसले बाद में, याद रखना तुम मंगेशकर पहले हो और भोसले बाद में हूं, बस इतना ही काफी है, तुम ज्यादा अच्छा करोगे और तुम बहुत अच्छा करोगे। दैट्स इट, दैट्स व्हाट लता जी सेड। और ये जो किस्सा है वो आशा जी ने खुद जो है वो सुनाया है। आशा जी कहती है बस फिर क्या था, दीदी ने ऐसा कहा और मैं आ गई रिकॉर्डिंग करने, और जब मैंने ऐसा गाया तो रफी साहब ने बहुत अच्छा गाया, रफी साहब ने किया हा हा जा हा हा जा, लेकिन मैंने किया हा जा हा जा, मतलब मैंने उसे अंदर से निकाला, एंड दैट्स व्हाट गॉट मी द प्राइज। जी हाँ, आडी बर्मन ने क्योंकि मेरे पर यानी कि पंचम दा ने मेरे पर लगाया था 500 रुपया, सो वो शर्त जीत गए और फिर उसके बाद हमने ये गाना रिकॉर्ड किया। लेकिन मुझे नर्वसनेस तो जरूर हुई थी कि क्या मैं रफी साहब से अच्छा गा पाऊंगी इस गाने को। वेल, आपने ये गाना सुना है, आप मुझे बताइए कि आपको रफी साहब वाला वर्जन पसंद है या आपको आशा जी वाला वर्जन पसंद है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: वीकेंड में।
1: जी हाँ दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, अब जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल, और कल है रक्षाबंधन। आई होप आपने तैयारी कर ली है, और अपने भाइयों को लूटना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि यही तो दिन होता है लूटने वाला। जी हाँ, मतलब और भाई लोग खुद ही यार अच्छे से गिफ्ट अपनी बहन के लिए ले जाइएगा, सीधी सी बात है। लूटना पड़ेगा ही नहीं अगर आप खुद ही इस चीज का ख्याल रखोगे, बस सीधी ही बात है। आप लोग बोलो कि कुछ ज्यादा ही सीधी नहीं होगी? जी हाँ, एकदम जलेबी की तरह। चलिए, इसी के साथ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं है बल्कि हमारे एक बहुत ही खास लिसनर है विशाल जी, उनकी तरफ से। गाने का नाम है बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। जी हाँ, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, और ये खूबसूरत सा जो गाना है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइश है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये गाना। एंड बाय बाय, सी यू, टाटा एवरीवन।
2: सांसों में तेरी

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर खुलेगा पहला विशाल कोस्टको। जी हां, ब्रिस्बेन के लोगों के लिए एक बड़ी खरीदारी की खुशखबरी। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल के पास $145 मिलियन की लागत से शहर का पहला भव्य कोस्टको वेयरहाउस खुलने जा रहा है। वहीं NRL रग्बी मैच में हुआ ऐतिहासिक नियम प्रयोग। ब्रिस्बेन के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आज रात ब्रिस्बेन ब्रोंकस और मेलबर्न स्टॉर्म के बीच होने वाले मैच में रग्बी लीग यानी NRL का एक अनोखा नियम ट्रायल किया जा रहा है। इस नियम के तहत ट्राई अंक गंवाने वाली टीम तय करेगी कि वो किक ऑफ करेगी या बॉल रिसीव करेगी। इसके साथ ब्रिस्बेन पावर हाउस में होगा मिस्टर फर्स्ट नेशन कंपटीशन। कला और संस्कृति के दीवानों के लिए ब्रिस्बेन पावर हाउस में अक्टूबर में होने वाले मेल फेस्ट यानी कि मेल्ट फेस्टिवल के तहत ऑस्ट्रेलियाई के पहले मिस्टर फर्स्ट नेशन प्रतियोगिता का ऐलान हुआ है, जो स्थानीय इंडिजिनस और ड्रैग कला को मंच देगा। वहीं क्वींसलैंड रिटेल और फूड इंडस्ट्री में भारी बढ़ोतरी। ब्रिस्बेन सहित पूरे क्वींसलैंड क्षेत्र में रिटेल और ग्रोसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस तिमाही में शानदार तेजी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय फूड प्रोडक्ट्स की मांग में 15% का इजाफा हुआ है। वहीं मेलविले आइलैंड रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट। जी हां, ब्रिस्बेन प्रशासन और प्रांतीय सरकार ने तटीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मेलविले आइलैंड के सड़क नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड की मंजूरी दे दी है। वहीं वर्कप्लेस पर रंग भेद खत्म करने के लिए नया कैंपेन। ब्रिस्बेन में मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दफ्तरों और कार्यस्थलों पर नस्लवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए आज से एक नया शहर स्तरीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले नेपाल बाढ़ में भारत का बड़ा कदम। जी हां, नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद भारत ने मदद का हाथ तेजी से बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना के सैन्य विमान से राहत सामग्री की दूसरी बड़ी खेप काठमांडू भेज दी गई है। वहीं भारत चीन सीमा वार्ता पर बनी सहमति। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर सकारात्मक खबर आई है। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सीमा परिसीमन पर बातचीत आगे बढ़ाने और मुद्दों को जल्द सुलझाने पर आपसी सहमति जताई गई है। वहीं अंडमान और निकोबार को BCCI का तोहफा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। BCCI अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अपनी एसोसिएट मेंबरशिप देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वहीं बिहार में छात्रों के लिए 24 घंटे स्पोर्ट। बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए विद्या साथी नाम की 24x7 यानी कि 24/7 स्पोर्ट सेवा शुरू की है। इसके साथ फ्लाइट सेफ्टी पर DGCA सख्त। विमानन सुरक्षा को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट के दौरान पायलट के ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद DGCA ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब सभी एयरलाइंस के क्रू और पायलटों को रैंडम मेडिकल ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नया बजट अपडेट सामने आया है। बुनियादी ढांचे में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और भूमि अधिग्रहण के कारण इसे पूरे प्रोजेक्ट की संशोधित लागत अब लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले मेटा पर $18 बिलियन का जुर्माना और समझौता। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अमेरिकी अदालतों में बच्चों की सोशल मीडिया लत से जुड़े एक बड़े मामले को सुलझाने के लिए $18 बिलियन का भुगतान करने पर सहमति जताई है। वहीं नेपाल बाढ़ पर UN की वैश्विक मदद। नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिया है। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावित इलाकों में दवाइयां, भोजन और सुरक्षा टीमों को तुरंत तैनात करने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ मध्य अमेरिका में एल नीनो का असर, अलर्ट जारी। जलवायु परिवर्तन और एल नीनो मौसम चक्र के कारण मध्य अमेरिका के देशों में सूखे और पानी की भारी किल्लत हो गई है। पनामा देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं अल सल्वाडोर और होंडुरस ने पूरे देश में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गाजा में शांति की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम। गाजा में लंबे समय से जारी संकट के बीच पहली बार सशस्त्र समूहों ने अपनी हथियार सौंपने और पूरा प्रशासनिक नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रभावित प्राप्त एक संक्रमणकालीन प्रशासन को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ रूस और अमेरिका के अधिकारियों की मॉस्को में बैठक। वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने निदेशक जॉन रेडक्लिफ ने मॉस्को का अचानक दौरा किया है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई इस बैठक को वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं यूरोपीय संघ के बजट को लेकर ब्रसेल्स में अहम मंथन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ को इस साल के अंत तक अपना नया दीर्घकालिक बजट पारित करना होगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले कायरन पोलार्ड ने रचा इतिहास, T20 में बनाए सबसे ज्यादा रन। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड कायम किया है। पोलार्ड ने इंग्लैंड के जोस बटलर को पीछे छोड़ते हुए T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत बनाम श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। हालांकि फॉलोऑन का सामना कर रही श्रीलंकाई टीम ने दूसरी पारी में वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम इस वक्त सीरीज पर कब्जा करने के बेहद करीब खड़ी है। वहीं T20 में सुनील नरेन का ऐतिहासिक कारनामा, क्रिकेट के मैदान से एक और रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन T20 फॉर्मेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के चुनिंदा गेंदबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। वहीं फिजिकल फिटनेस पर भारतीय हॉकी टीम का नया प्लान। वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधन ने खिलाड़ियों के स्प्रिंटिंग और फिटनेस आंकड़ों को सुधारने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका To win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.
10: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: अनु।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोन 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी। शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सुलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रसोन 101.1 सर फेसबुक पेज जी ब्रसोनी ब्रसोनी .com साडी ईमेल आईडी है। करिया जेड़ा तुम चंगा लगता है अपना लो सा गलबात जरूर करो। तो फटाफट के जुड़ना शुरू करो। मैं हूने वापस आने कितने जाना थोड़ा गलबात जरूर करते रहना। बस तुम जुड़ना ना भूलो। हूँ वापस आई मैं तुम उन्होंने समा इन्होंने सोने जी कितने इंजॉय करो।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल तुसी बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वो ना सिर्फ सेहत दे लई बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स दा करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तो बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी ते कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन से बने हुए दस रही सी ना मैं थोनों के केड़े केड़े अजे सितारे है जिन्हों की जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो यो हनी सिंह दा आता है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह दा शराब ते ड्रग दी लत नाल जूझना उन्हां दे करियर दा सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिस दे कारण साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब हो गए सी। उन्हां ने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा है कि उह शराब ते नशीली दवाइयां विच बुरी तरह के नाल डुब चुके सी, जिस नाल जिस तो उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

जी तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बरसाने वन सरम वन एम ते चार छे संदेश अलग दिन बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम हैगा वो है जी मनीषा कोइराला दा। तो मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मों विच अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की है, तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है, तो बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म दे विच कीती है। पर उन्होंने शराब की लत नाल बहुत लंबा संघर्ष किया। मनीषा ने खुद खुल के दस्या हैगा है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल पूरी तरह के नाल बिखर गई सी। इस लत ने ना सिर्फ उन्होंने सेहत नु नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्होंने करियर ते निजी जीवन ते भी बहुत ही ज्यादा डूंघा असर पाया सी।

शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 04525849926। ग्रैंड भजन नाइट।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 एम ते 4-6 संदेश अलग दिन से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे क्योंकि वो पट खानदान दे नाल जुड़े हुए है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना, ते ना है शाहीन भट्ट, नाम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे, पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई थी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग्या सी।

0: करी।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Amitabh Bachchan
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

हाँ जी जी आनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 ते जी आर चेस संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। लिस्ट दे विच नाम तो कई है ने, पर हुण तुसी सोच रहे होंगे कि जेड़ा शब्द जहन दे विच सब तो पहला नाम आया से मैं हाले तक लिया क्यों नहीं। ले लैनी है नाम है जी संजय दत्त जी। हाँ बॉलीवुड स्टार संजय दत्त नु ड्रग्स की गंदी लत लग गई सी। वधर उन्होंने शराब पीण दी उन्होंने बहुत ज्यादा आदत भी सी। इस नाल संजय दत्त के करियर ते बहुत बुरा असर पिया सी। हालांकि संजय दत्त ने अपने बुरियां आदतों नूं बदल लिया। अज बॉलीवुड तो लैके साउथ तक हर पासे धमाल मचा रहे ने। एक्टर तो बहुत ज्यादा शानदार ने। बेशक केड़ी भी फिल्म दा जिक्र कर लो हर फिल्म दे विच छाए रहिंदे ने।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका To win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
3: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसर वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुरानी 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्हों का नाम है इस लिस्ट विच शामिल। बॉलीवुड दी दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब दी लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, इसके करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो कि परवीन बॉबी अपने समय की हिट एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारिया शानदार फिल्मा दिखाई ने, उन्होंने खूबसूरती का जलवा तो अज भी बरकरार है।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम उन्हों का है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्होंने करियर के गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान नू रीहैब जाना पै गया से, जिस नाल उन्होंने करियर नू झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर ते समिता पाटिल दे बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो यह सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में शामिल है।

0: की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

देखो जिन्ने भी नाम मैं हुण दस्से हैगे ने ओह नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने, सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स हैगे ने। तुहानू कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किस दा तुहानू लगता है कि ओह जिहड़ा समां उहनां दा खराब गया हैगा ओह नहीं जाणा चाहीदा सी, ते जो शराब दे नशे दे विच ना डुबदे ते उस टाइम नूं ना बर्बाद करदे तां अज होर ज्यादा उपर होणे सी। दसो जरूर तुसी जुड़ो साडे नाल रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज है जिते brisswani@brisswani.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए जिहड़ा भी तुहानू चंगा लगदा तुसी अपनाओ पर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तां तुहानू इही कहना है जी कि कल करदे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430-228-009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: दीवाना

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

शर्त में चाहता हूं। तुम्हारे खाते में सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452 584 926। ग्रैंड भजन नाइट।

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

ना बदला मैं, ना बदला वो, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टा।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ये सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आज नए दिन की शुरुआत के साथ आ गई है सताक्षी आपके लिए आराधना का साथ लेकर। भक्तजनों, आज का दिन सिर्फ भक्ति का नहीं, भाई और बहन के प्रेम को समझने का भी है। आज रक्षाबंधन है और इसी अवसर पर मैं आपके साथ हूँ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आज जब मीठी हवाओं में मीठी सूत का वो धागा लहरा रहा है, जब हर घर से रोली और चावल की खुशबू आ रही है, तब दिल अपने आप एक असीम शांति और सुख से भर जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक बहन द्वारा अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने का उत्सव है, या इसके पीछे छुपा है सृष्टि के संरक्षक का कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज आपके साथ इसी बात पर बात करेंगे। सुनते रहिए हमारे साथ आराधना रेडियो प्रिस्वानी 1701 एफएम पर। और चलिए साथ मिलकर चलते हैं राखी के इस धागे को और अनमोल और पावन बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि पहला धागा तो उन्हें ही बंधना चाहिए राखी का।

0: सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीजु प्रिस्वानी 1701 एम पर। जब भी रक्षाबंधन की बात आती है तो हमारे मन में सबसे पहले नाम आता है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का। शिशुपाल के वध के समय जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा तो द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपने सबसे प्रिय रेशमी साड़ी का आंचल फाड़कर प्रभु की उंगली पर बांध दिया था। उस साधारण से कपड़े के टुकड़े में कोई मंत्र नहीं था, उसमें केवल एक निस्वार्थ प्रेम था। और बदले में केशव ने क्या दिया? महाभारत के उस भरे दरबार में जब द्रौपदी का सम्मान दांव पर था तो वही एक छोटा सा धागा अनंत वस्त्र बनकर द्रौपदी की साख और सम्मान की ढाल बन गया। और उसी सम्मान को मनाने का त्योहार है रक्षाबंधन। आइए बढ़ते हैं रक्षाबंधन के मौके पर इसी और गीत के साथ आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

रेडियो प्रस्वानी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी को और हम मिलकर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आराधना में रक्षाबंधन। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रेशम का वो धागा भाई बहन के रिश्ते से भी परे है, समर्पण का प्रतीक है। जब आप ईश्वर को अपना रक्षक मानकर अपने भाव की राखी बांधते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आराधना रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। हम अक्सर सोचते हैं कि रक्षाबंधन पर भाई बहन की रक्षा का वचन देता है, लेकिन कभी गौर किया है आपने, रक्षा सिर्फ बाहरी शारीरिक खतरों से नहीं होती। सच्चा रक्षक वो है जो आपके विचारों की रक्षा करे, जो आपको तमस से उजाले की ओर ले जाए। आज के दौर में सबसे बड़ी रक्षा है एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा। अगर आप अपनी बहन या भाई को एक ऐसा स्थान दे सकें जहां वो बिना डर के, बिना जजमेंट के अपने दिल की बात कह सके, तो यकीनन आपने आज के दिन का सबसे बड़ा रक्षा कवच उन्हें दे दिया है।

आराधना सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, आपके साथ सताक्षी है और आज हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं आराधना में रक्षाबंधन। आइए इस पावन पर्व के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं प्रभु भक्ति में डूबा ये अगला गीत।

रक्षाबंधन की एक और कहानी की ओर आइए आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कथा की। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से सब कुछ दान में मांग लिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पाताल लोक में उनके द्वारपाल बन गए, तब बैकुंठ धाम उदास हो गया। माँ लक्ष्मी अपने स्वामी को वापस लाना चाहती थी। तब माँ लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास गई। उन्होंने बलि की कलाई पर एक सूती धागा बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। जब बलि ने उनसे उपहार मांगने को कहा तो महालक्ष्मी ने अपने असली रूप में आकर भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने सहर्ष अपने प्रभु को विदा किया और माता को उपहार स्वरूप अनन्य भक्ति दे दी। सोचिए वो धागा कितना शक्तिशाली था जिसने साक्षात ईश्वर को भी एक बंधन में बांध लिया।

राखी का धागा केवल वो नहीं जो बाजार में मिलता है, राखी का असली धागा भाव का होता है और उसी भाव को आज हम आराधना में जी रहे हैं। आराधना सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। आपके साथ सताक्षी है और आज हम और आप आराधना में बात कर रहे हैं राखी के धागे और उससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं की। हमारा आपके साथ ये साथ आगे भी जारी रहेगा, सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 एम।

आराधना में आज एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम इंसानों ने रक्षाबंधन को सिर्फ परिवार तक सीमित कर दिया है, पर हमारी संस्कृति में प्रकृति को भी राखी बांधने की परंपरा रही है। वृक्ष जो हमें बिना कुछ मांगे ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, क्या वो हमारे सबसे बड़े रक्षक नहीं है? आपको पता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एक नया आयाम दिया था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वो प्रकृति और समाज के हर वर्ग को राखी बांधें, ताकि आपसी भाईचारा और पर्यावरण की रक्षा हो सके।

तो ये था आज आराधना पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ। आज हमने आराधना में साथ मिलकर मनाया रक्षाबंधन। चलते चलते बस आपसे यही कहना है, बाहर की कलाई पर राखी बांधने के साथ साथ आज अपने भीतर की आत्मा को भी एक संकल्प की राखी बांधिए। संकल्प क्रोध से अपनी रक्षा का, नकारात्मकता से अपने विचारों की रक्षा का और हर परिस्थिति में सच के साथ खड़े रहने का। आपके लिए रक्षाबंधन शुभ हो और भाई बहनों का ये त्योहार उनके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ अब लेती हूँ विदा। राधे राधे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Digicel, better together.
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
8: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the Great Australian Dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
9: नमस्ते यदाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजी चानी जैन। और आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक और डेट नहीं दोस्तों, आज फिर एक नई बिगनिंग है, एक नई स्माइल है और एक नई कहानी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज बहुत ही खास दिन है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन। और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर। दोस्तों, आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो दोस्तों, आज की मॉर्निंग थोड़ी सी स्पेशल है उन भाई बहन के नाम जो एक दूसरे को ना इरिटेट भी करते हैं, लड़ते भी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो जिसके भी भाई लाइफ में कोई स्पेशल ब्रदर या सिस्टर है, आज उन्हें एक मैसेज जरूर करना कि तू है ना, इसीलिए लाइफ थोड़ी और ब्यूटीफुल है। सो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, एक प्यारी सी एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक इंटरेस्टिंग अपडेट आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। बिग ब्रदर्स ऑस्ट्रेलिया का 2026 सीजन एक इंटरेस्टिंग चेंज लेकर आ रहा है। शो का फेमस हाउस अब गोल्ड कोस्ट के ड्रीम वर्ल्ड में नहीं बल्कि ब्रिस्बेन के हेमंट में स्क्रीन क्वींसलैंड स्टूडियोज में बनाया जा रहा है और कास्टिंग भी चल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस 31st of August 2026 तक ओपन है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप बिग ब्रदर हाउस में सर्वाइव कर सकते हैं, शायद अब ब्रिस्बेन में चांस मिल सकता है दोस्तों। तो अगर आपने चांस लेना है तो देर मत कीजिएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, मेरे म्यूजिक लवर्स, आपके लिए भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है भाई। ऑस्ट्रेलिया की म्यूजिक इंडस्ट्री ने एआई जनरेटेड म्यूजिक को लेकर नए रूल्स अनाउंस किए हैं। एआरआईए के अनाउंस्ड रूल के अकॉर्डिंग फुली एआई जनरेटेड म्यूजिक ऑस्ट्रेलियन चार्ट्स के लिए भाई एलिजिबल नहीं होगा। रीजन सिंपल है, म्यूजिक में ह्यूमन क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देना, तो असली आर्टिस्ट की आवाज, असली इमोशंस और असली क्रिएटिविटी शायद अब और भी वैल्यूएबल होने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। सो दोस्तों, अब वक्त है आज के सबसे स्पेशल सेगमेंट का, जो कि है रक्षाबंधन स्पेशल। रक्षाबंधन सिर्फ दोस्तों राखी बांधने का फेस्टिवल नहीं है, ये उन मेमोरीज का फेस्टिवल है। बचपन में एक चॉकलेट के लिए लड़ना, टीवी रिमोट के लिए फाइट करना, एक दूसरे की कंप्लेंट्स मम्मी पापा से करना, और फिर क्या, जब बड़े हो जाते हैं तो वही भाई या फिर बहन लाइफ के ना टफेस्ट मोमेंट्स में सबसे पहले याद आते हैं, है ना? एग्री करते हो ना? कभी कभी सिबलिंग्स ना एक दूसरे को आई लव यू तक नहीं बोलते, लेकिन एक सिंपल सा भाई कहाँ पहुंची, खाना खा लिया, पैसे चाहिए तो बता दे, बस इतना ही काफी होता है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर एक्सपेंसिव गिफ्ट जरूरी नहीं, एक कॉल कीजिए, एक हग कीजिए और अपने दिल की बात भाई कह डालिए। इससे अच्छा गिफ्ट किसी सिबलिंग्स के लिए हो ही नहीं सकता। चाहे हम कितना भी लड़ लें भाई, भाई या बहन हमेशा मेरा अपना तो रहेगा ही, मुसीबत में हम ही खड़े होंगे। तो यही तो नाम है रक्षाबंधन का। सिर्फ एक धागा बांधने का मतलब नहीं कि सिर्फ ये रक्षाबंधन है या रक्षा कवच है। भाई बहन का एक दूसरे को हर मुसीबत खुशी में एक दूसरे के साथ खड़े होना, यही असली प्यार और यही असली बंधन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से भी रक्षाबंधन की और राखी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में, जहाँ पर हम इतनी भाई बहनों की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक क्यूट सा सवाल आप सभी के लिए। अच्छा, आपके सिबलिंग्स की सबसे फनी या फिर इरिटेटिंग हैबिट क्या है? क्या वो आपकी चीजें बिना पूछे यूज करते हैं, या फिर चाइल्डहुड में आपकी कंप्लेंट्स मम्मी पापा से करते थे, या फिर आज भी दोस्तों दोनों जब आप लोग मिलते हैं तो बचपन की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है? आप हमें मैसेज करके जरूर बता सकते हैं कि मेरा भाई की ये इरिटेटिंग चीज बुरी लगती है, ये इरिटेट लगता है, ये बातें अच्छी नहीं लगती है ना, फाइटिंग इस वजह से हो जाती है। तो आप अपने भाई बहन की बातें शेयर कर सकते मम्मी पापा से करते थे, या फिर आज भी दोस्तों दोनों जब आप लोग मिलते हैं तो बचपन की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप हमें मैसेज करके जरूर बता सकते हैं कि मेरा भाई की ये इरिटेटिंग चीज बुरी लगती है, ये इरिटेट लगता है, ये बातें अच्छी नहीं लगती है ना, फाइटिंग इस वजह से हो जाती है। तो आप अपने भाई बहन की बातें शेयर कर सकते हैं हमारे रेडियो ब्रिस्वानी की।

वाली होती, मेरे लिए क्यों नहीं खरीदा। दूसरी बोलती है, मेरे लिए क्यों नहीं खरीदा, मैं भी तो थी, मेरे मुझे ही दिखा देते, मैं भी पसंद कर लेती। उसी बात में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही यही तो प्यार होता है भाई बहनों का। आपकी कौन सी ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आप कभी नहीं भूल सकते, और हर बार जितनी बार मिलो ऐसी बातें होती ही है। आप बस जुड़े रहिए रेडियो ब्रिस्वानी में।

हाँ जी, इतने प्यारे प्यारे गीत आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी में, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जानने का सफर। दोस्तों कुछ भी कहो, लाइफ में कितने भी नए लोग आ जाएं, कुछ पुराने रिश्ते कभी रिप्लेस नहीं होते। और रक्षाबंधन हमें यही याद दिलाता है कि फैमिली परफेक्ट नहीं होती, फैमिली अपनी होती है। सो मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिजवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रेसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल बाढ़ का चीन कनेक्शन, 359 लोगों की मौत, 288 भारतीयों समेत 1500 से ज्यादा लापता। गुनगुनी चमकती धूप, खुशनुमा मौसम और बेफिक्र जिंदगी, तभी अचानक एक तेज सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। बहुमंजिला इमारतें, महत्वपूर्ण पुल और इंसान खिलौनों की तरह देखते देखते बह गए। ये खौफनाक नजारा चीन नेपाल सीमा पर देखने को मिला। इस तबाही ने 2013 में उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में आई जल प्रलय की याद दिला दी है। नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है और दोनों राज्य अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि इस तबाही में 259 लोगों की मौत हुई है, जबकि 288 भारतीयों समेत लगभग 1500 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। लापता भारतीयों में अधिकांश कैलाश मानसरोवर यात्री हैं। चीन और नेपाल के अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने और भारी तबाही की आशंका जताई है। तीन देश एक पर्वतीय प्रणाली, नेपाल ने भारत से लगाई गुहार, बोला चीन को भी साथ ले लें। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछाने ने भारत और चीन से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आने की अपील की है। रवि लमिछाने ने कहा कि भारत और चीन से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर नेपाल के साथ मिलकर काम करने और एक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी ने यह दिखाया है कि तीनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। 72 घंटे में टूट सकती है नेपाल बॉर्डर पर बनी झील, चीन की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट पर प्रशासन। नेपाल के भूटोकोसी नदी में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही के बाद खतरा अभी टला नहीं है। चीन की तरफ से इसे लेकर हाई अलर्ट भेजा गया है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में छोछेना खोला और पुरेपू नदियों के संगम के पास एक बड़ी अवरोधक झील बन गई है, जिसका जल आयतन गुरुवार सुबह तक 20 लाख घन मीटर अनुमानित है और झील पहले ही ओवरफ्लो हो रही है। अगले तीन दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी के झील में आने की उम्मीद है, जिसके कारण इसके टूटने का जोखिम है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। अब ड्रोन कैमरों की मदद से सुलझेगा भारत नेपाल 10 गजा विवाद। भारत और नेपाल अपनी खुली सीमा के उस हिस्से का सटीक मैप तैयार करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कागजों पर खाली रहना चाहिए। इस इलाके को 10 गजा कहा जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ नो मैंस लैंड या बफर जोन बनाता है। हालांकि जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। इसके कुछ हिस्सों पर खेती हो रही है, कब्जा किया गया है या निर्माण कार्य हुए हैं। दोनों देश अब हवा से इस अंतर को मापना चाहते हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट हो गए हैं 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये साथ रहेगा। आज फ्राइडे है, आज है 28 अगस्त, कुछ ही दिन बाकी है इस मंथ को एंड होने में। जो ये साल की जो रफ्तार है कुछ खास है और सभी लोग सभी चीज जो वीक है मंथ है बस भागे जा रहे हैं, इसके साथ हम भी भागे जा रहे हैं। वैसे दोस्तों आज फ्राइडे है और आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको खास करना है आज। शायद घर पर रहने वाले हैं, आज घर से काम कर रहे हैं, या फिर छुट्टी है, या फिर रिटायर्ड है घर पर रहते हैं। आपको भी कुछ प्लान्स बनाए हैं शायद आपने, आपको भी करना है, या फिर सिक हैं आप, अपना ख्याल रखिएगा। आशा है दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। चलिए शुरू करते हैं आज का सुबह का सफर।

तो सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं और चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है। ब्रिस्बेन के लिए 15 डिग्री अभी है, सनी डे रहेगा आज और आज का टॉप्स रहेगा 24। विंड गस्ट बताया गया है 13 किलोमीटर एन आवर। सैटरडे को 70% चांस रेन बताया गया है, टॉप्स रहेंगे 23। सैटरडे को संडे को सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 22। और मेलबर्न के लिए बताया गया है 8 डिग्रीज रहेगा, सनी डे टॉप्स रहेंगे 16। विंड गस्ट बताया गया है 13 किलोमीटर एन आवर। कैनबरा के लिए 4 डिग्रीज मोस्टली क्लाउडी और टॉप्स रहेंगे 15। सिडनी के लिए 10 डिग्रीज है, सनी डे रहेगा और टॉप्स रहेंगे 19। गोल्ड कोस्ट में बताया गया 15 डिग्रीज रहेगा, पार्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 21। और फिर सनशाइन कोस्ट के लिए बताया गया है 16 डिग्रीज अभी है, मोस्टली सनी डे रहेगा, टॉप्स 21। विंड गस्ट भी रहेगा 21 किलोमीटर एन आवर। तो दोस्तों ये कुछ फोरकास्ट, अभी तो बहुत ही खूबसूरत सा वेदर है आउटसाइड, आप बाहर निकले हुए हैं, शायद वॉक पर चले गए हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हैप्पी फ्राइडे। दोस्तों 11 मिनट हो गए हैं 7 बजकर, आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी आपकी अपनी पहचान, मैं हूं आपके साथ ही नीलम। 9 बजे तक हमारा ये साथ रहेगा और जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: वेलकम बैक दोस्तों, और ट्रैफिक अपडेट देखते हैं। सेंटेनरी मोटरवे टरिंगा, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हजार्ड है, नो ब्लॉकेज दो नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स टुओंग। और सदर्न क्रॉसवे हैंड्रा, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल है, वन लेन इज ब्लॉक्ड नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स सनशाइन कोस्ट। और रास्ते पर है आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, सुबह के सफर में आप शामिल हैं और इट्स 23 after 7। ऐसे कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि अ सेंट वाज आस्क्ड, किसी ने संत जी से पूछा कि एंगा क्या है, तो उसने कहा बहुत ही खूबसूरत से कि ये एक पनिशमेंट है जो हम अपने आप को देते हैं फॉर समबडी एल्सस मिस्टेक। तो जब गुस्सा होते हैं आप और किसी और को लेकर, तो ये हम अपने आप को पनिश करते हैं। तो दोस्तों, आज आप गुस्सा हैं अगर, तो सोचिएगा इसके बारे में कि क्या करना है आपको। आर यू गोना पनिश योरसेल्फ? जी नहीं। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है, गुस्सा करने के लिए टाइम कहाँ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: दोस्तों, सुबह का सफर में शामिल हैं आप, और अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको. आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हैव अ लवली डे. और कोई खास इवेंट है आपके लाइफ का, या कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं

दोस्तों, ये गीत मैंने लिया था फिल्म 15 अगस्त सॉरी, एंड आई थिंक पहले बार इस गीत को मैंने बजाया है, एंड आई सॉर्ट ऑफ लाइक्ड इट। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप उस तरह के पर्सन हैं जो सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और आप खाना नहीं खाते हैं, एंड शायद आप सोचते हैं कि शायद कॉफ़ी पीते हैं आप, या फिर एक बनाना ले लेते हैं, या फिर ऐसे हो या कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आपको बताते हैं, सजेशन देते हैं कि जब हम ब्रेकफास्ट में कुछ खाते नहीं हैं, वॉक पर निकल जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली लास्ट मील आपका होता है जब आप लास्ट नाइट आपने खाया है खाना, डिनर किया है आपने, एंड देयर इज सच अ लॉन्ग गैप, आपने कुछ खाया नहीं है, तो ऑन द रन आप थोड़ा कैशियो ले सकते हैं, या फिर विद डेट्स। मेरा मेन हीरो आज का है वो है डेट्स। सो और डेट्स क्यों अच्छा है, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपको क्या कहता है, रीड करता है फटीग और टायर्डनेस है, और इसमें नेचुरल शुगर्स है। और हाँ, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप केवल 3 या 4 डेट्स ही खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। और यू नो, ये डेट्स जो है ये अनीमिया से हेल्प करता है, और रिच इन आयरन है इसका, और रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो, और फिर इसमें ढेर सारे विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप यू नो, समटाइम्स आप अपने सैंडविच बैग में बस या छोटी सी कोई एनीथिंग कंटेनर में आप फ्यू डेट्स ले लें, और थोड़ा कैशियो डाल लें या बादाम डाल लें, बस रास्ते में आप जा रहे हैं, अगर वो ही खा ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर थोड़ा एफर्ट कीजिएगा अपने आप को लुक आफ्टर करने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि यू नो, कि आप अपना ख्याल रखें, स्पेशली वर्क पर जा रहे हैं, ज़रूरी है कि आप यू थिंकिंग ग्रेट एंड यू डूइंग वेल, यू परफॉर्मिंग वेल। और अगर आप थके रहते हैं हमेशा, तो दैट्स नॉट गोना हैपन। सो या जस्ट अ लिटिल टिप कि अगर ब्रेकफास्ट आप स्किप करने वाले हैं, स्किप करते हैं हमेशा, तो आप ये कर सकते हैं, रात के पहले रात में आप भर लें, यू नो, पैक इट अप, एंड ताकि आपको टेंशन ना हो सुबह भरने के लिए। तो ये भी है, क्योंकि सुबह आप देरी से उठते हैं, या फिर और कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, लंच रेडी करना पड़ता है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, तो इसमें आप सोचते हैं कि अपने लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण आप अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं। सो दैट्स अ नो नो, यू शुडंट बी डूइंग दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं।

बस तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। दोस्तों, क्या कलर पहन रहे हैं आप आज, इसके बारे में आपने सोचा है? या फिर क्या प्रेजेंट करना, आप कैसा फील कर रहे हो? या हाउ द वर्ल्ड मीट्स यू, इट इज ऑल इन द कलर दैट यू वेयरिंग। तो दोस्तों, अगर वैसे जो हर एक कला होता है, ये एक वाइब्रेशन है, और हर एक जो कला होता है आप पहनते हैं, समझ लो आपने येलो आज पहना है या फिर ब्लू पहना है, तो इसका एक ही अपना एक फ्रिक्वेंसी रहता है। एंड जो आप कलर पहने, इट डज मोर देन डेकोरेट यू। तो कलर के बारे में बात करते हैं आज। अगर समझो आपने आज रेड पहना है, तो क्यों पहना है? शायद इसके बारे में कुछ सोचा आपने, क्या फील करना चाहते थे आप, क्या दिखाना है आपको, शायद कुछ सो रेड के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जो रेड कलर है, ये इज वेरी ग्राउंडिंग, और इस रेड इज ग्राउंडिंग एंड वाइटैलिटी। ये वेकअप करता है बॉडी को, इट स्टर्स करेज और एंड रूट्स यू टू द अर्थ। एंड जब आपको दिखाना है अपना स्ट्रेंथ, अपना प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस, तो आप इसे पहन सकते हैं। एंड अगर आपने येलो पहना है, कितनी बार जब मैंने येलो पहना है, एंड आई फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। एंड एक्चुअली येलो इज कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल पावर। एंड अगर आप पहनते हो, तो उस पर आपको यू नो दैट आई बिलीव दैट ट्रस्ट भी होना चाहिए, यू नो। एंड कि अगर आपने पहना है, ये अचानक से आ जाता है, अगर आप उसमें लिंक्ड हो या आप उसमें उसके वही फ्रिक्वेंसी पे आप सोच रहे हैं, तो यू विल फील इट। द कलर ऑफ द सन एंड द इनर फायर, इट लिफ्ट्स द मूड एंड स्टेडीज सेल्फ बिलीफ। वेयर इट व्हेन यू नीड ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी और द विल टू मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स येलो फॉर यू, अगर आपने येलो पहना है। अगर ग्रीन पहनने जा रहे हैं आज या पहन लिया है, इज द हार्ट। एंड फील इट, द कलर ऑफ द सन एंड द इनर फायर, इट लिफ्ट्स द मूड एंड स्टेडीज सेल्फ बिलीफ। वेयर इट व्हेन यू नीड ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी और द विल टू मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स येलो फॉर यू, अगर आपने येलो पहना है। अगर ग्रीन पहनने जा रहे हैं आज या पहन लिया है, इज द हार्ट एंड बैलेंस। और

तो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे। और रिमाइंडर रिमाइंडर, तो दोस्तों कल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन पर्व है वो स्टार्ट हो रहा है, और आपके कम्युनिटी में या फिर आपके मंडलीज में अगर आपने सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और सनातन सेंटा में भी हो रहा है, तो

ये तो बहुत everyone looks forward to Christian must be, and I'm sure you'll be going there. और जो भी आप कर रहे हैं, make sure you have a very wonderful time. And और जो कि राखी है, आज राखी का लास्ट डे है, और अभी तक आपने अगर अपने भैया को राखी नहीं बांधा है तो इट्स टाइम कि आप अगर बांधते हैं तो ज़रूर डू नॉट फॉरगेट दैट ट्रेडिशन. एंड राखी के अवसर पर सभी भाई और बहनों को याद करना चाहेंगे. वैसे राखी तो आप उसको भी बांध सकते हैं जो आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंस है आपके लाइफ में, जो प्रोटेक्ट करता है आपको, आपके लिए सभी टाइम रहता है. एंड इस या इट कुड बी गॉड एज वेल, यू नो. सो ढेर सारे वेज है, ढेर सारे थिंकिंग है राखी को लेकर. सो आप किसको फॉलो करते हैं ये आप पर है. और राखी का जो जो पर्व है, और राखी तो पूरा महीना श्रावण के महीने में पूरा टाइम रहा जब आप भान सकते थे. तो चलो राखी एक गीत हो जाए. और फॉर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर,

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। You can also order tailor-made suits from Rani Creations. Itna hi nahi, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Wollongabba, open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: दोस्तों, इट्स 1:01 और एक घंटे का सफर बाकी है हमारे और आपके साथ का। हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ब्रिस्बेन में टेम्परेचर 16 डिग्रीज है।

दोस्तों, बहुत ही खसरा सा गीत हमने फिल्म वो टू से लिया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक जिंदगी के बारे में एक छोटी सी शायरी है, ऐसे छोटी नहीं है, थोड़ी लंबी है। चलो पढ़ते हैं आपके लिए। एक दिन सब छूट जाएगा, एक दिन सब छूट जाएगा, नाम भी, पहचान भी, शिकायतें भी, और साबित करने की जिद भी। फिर क्यों ना आज ही थोड़ा हल्का होकर जिया जाए, थोड़ा कम सोचा जाए, थोड़ा ज्यादा महसूस किया जाए। जो अपने हैं उन्हें समय दिया जाए, जो नहीं है उन्हें जाने दिया जाए, और जो मिला है उसके लिए आभार सीखा जाए। शायद यही जीवन जीने की सबसे सुंदर कला है। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं और थॉट टू शेयर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म जानी दुश्मन से हमने इस गीत को लिया, और इस फिल्म में नीतू सिंह है और जितेंद्रा पर फिल्माया गया ये सॉन्ग। एंड आई थिंक इसमें संजीव कुमार भी है। एंड अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि इसमें जो ब्राइड्स होती थी उनका मर्डर हो जाता था, किलिंग समथिंग लाइक दैट। एंड ये वो जो ठाकुर था वो संजीव कुमार, आई थिंक ही वॉज द वन किलिंग, कुछ ऐसा ही था। एंड वो गब्बर वाला गब्बर और ठाकुर ला स्टोरी नहीं, ये डिफरेंट है। सो ये इट्स अ लवली सॉन्ग। एंड इसमें और भी अच्छे बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स हैं दोस्तों, अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा ये मूवी। और चलिए ट्रैफिक की तरफ देखते हैं। बैकट रोड मैकडोवल, यहाँ पर मल्टी व्हीकल क्रैश है। वन लेन इज ब्लॉक नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स ब्रिजमेन टाउन्स। और सेंटेनरी मोटरवे टरिंगा जो हजार था, इट्स बीन क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: होते होते होते प्यार होता है।
1: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। इट्स 18 आफ्टर 8 और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। दोस्तों हमेशा आई कीप रिमाइंडिंग कि कभी किसी कोई चीज जो हो, अगर कुछ करना चाहते हो, कभी उसको एकदम ज्यादा के टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं करो। और अगर कुछ करना है तो बस करो, या कुछ बोलना है, किसी से मिलना है, किसी को कॉल लगाना है, फोन करना है, तो यू नो डू नॉट वेट। अगर कोई एक्सपेंसिव वाला परफ्यूम आपने खरीदा हुआ है, आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि अच्छा सा ओकेजन होगा तब लगाएंगे, और कोई यू नो कार आपने खरीदी है, बहुत चलाते नहीं है, आप सोचते हो कि लंबी ड्राइव प्लान करेंगे तो ही चलाएंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ जो होते हैं उसके बहुत हम शिद्दत से संजो के रखते हैं और उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन लाइफ का क्या भरोसा है। इसी तरह से हमारे हाथ एक छोटी सी कहानी लगी तो हम सोचते हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे स्टोरी कुछ ऐसे जाता है। अ मैन वर्क्ड एट द सेम जॉब फॉर 39 इयर्स। ही रिटायर्ड ऑन अ फ्राइडे। एट हिज फ्यूनरल हिज वाइफ सेड 6 वर्ड्स दैट लेफ्ट द एंटायर रूम साइलेंट। ही रिटायर्ड ऑन अ फ्राइडे। 11 डेज लेटर He passed away. At the funeral, someone said, at least he finally had a chance to rest. His wife didn't agree. She said, no, he waited too long to start living. The entire room fell silent. She said, we kept saying we'd do it after retirement. The trip, the little house by the water, the slow, peaceful mornings. Eventually, we ran out of afters. I'm not sharing this to make you feel bad. I'm sharing it so you stop waiting for permission to enjoy the life you already have. Then she shared the 3 things she started doing that very same month. She still follows all 3 today, starting using the good things now, the nice plates, the perfume, the soft towels you usually save for guests. Your mind learns how much you value yourself by noticing what you allow yourself to enjoy. Secondly, plan one small thing for this week. Take a drive to the water. Have one slow morning with your phone turned off. Small actions teach your mind more than big plans you keep postponing. And the third thing she did was say it out loud before your day begins. I'm allowed to enjoy my life now. Your subconscious listens to the voice it hears most often. Make sure that voice is yours. 6 months later, she sold the house. She moved closer to the coast they had always dreamed about. She finally started living the life they had postponed for 39 years. There is no perfect after when everything is finally settled. There is only now and how much of it you choose to truly live. Don't save the good things for someday. Don't keep postponing the trip. And don't keep saving your life for later. Later isn't guaranteed. Now is what you have. दोस्तों जो ये स्टोरी मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे कभी कभी आई फील दिस वे कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है या रिलेशनशिप में है, दोनों के ख्यालात अगर डिफरेंट हो, तो आप अगर समझो आपका जो हस्बैंड है वो कहता है अच्छा 13 यू नो कुछ दिन जब अच्छा टाइम रहेगा हमारे रिटायरमेंट के बाद तो ही हम चलेंगे यहाँ पर ये यूरोप के ट्रिप पर रिटायरमेंट के बाद। लेकिन आप अगर है समझो मैं हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं नेक्स्ट ईयर, क्यों नहीं दिसंबर में, यू नो। सो तो द थिंग इज कि आप भी जरूर बता सकते हैं मुझे कि अगर एक पर्सन डिफरेंटली सोचता है रिटायरमेंट के बाद, सच अ लॉन्ग टाइम, और एक दूसरा पर्सन है कि वो सोचता है कि अभी क्यों नहीं, व्हाई नॉट नाउ। तो अगर रिटायरमेंट वाले के साथ जो सेकंड वाला उसके साथ साथ वेट करता है, उसने भी अपने लाइफ का कितने ढेर सारे ट्रिप्स वेस्ट कर दिए, राइट। अगर आज इस दिसंबर को यूरोप जाना था, शायद नेक्स्ट ट्रिप में उसको कहीं और जाना था, यू नो, तो उसने और भी प्लान्स सोच रखे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, योर हस्बैंड और योर पार्टनर, आप वहीं स्टक है, यू वेटिंग फॉर रिटायरमेंट. हाँ, दिस इज नॉट फेयर. ये मैं सोच रही हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सो देखो, अभी ऐसा हुआ कि ना दिस पुअर थिंग इज डूइंग ऑल द आफ्टर्स दैट दे थॉट अबाउट अलोन, जो वो पहले कर सकते थे. एंड या इट्स सैड, बट दैट्स लाइफ.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: दोस्तों आज से आधे घंटे का समय बाकी है हमारे पास, और याद दिला दे कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म याराना से हमने इसको लिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपने फ्रिज क्लीन करना है, आप क्लीन कर रहे हैं, अपने फ्रिज एम्प्टी कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? फ्रिज का एम्प्टी करने के बाद एक स्प्रे बॉटल में आप ले सकते हैं 1 कप वाटर, 1/2 कप ऑफ विनेगर, 1 टेबलस्पून ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट, और अच्छी तरह से इसको हिला लें और फिर स्प्रे इनसाइड द फ्रिज एंड जस्ट वाइप इट डाउन विद अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो वो अब्जॉर्ब करता है एनी अदर लिटिल थिंग्स दैट्स इन द फ्रिज, और देयर यू गो, योर फ्रिज इज स्पार्कलिंग क्लीन। तो ये टिप विद जो विनेगर रहता है इज वेरी गुड दोस्तों। और लॉट्स ऑफ टाइम्स जब अगर आप विंडो भी क्लीन करते हैं, देन अगर विनेगर और वाटर और डिश वॉशिंग लिक्विड का जो मिक्सचर है ये आप यूज़ करते हैं, जो विंडो होता है बहुत, जो शीशा है बड़ा सुंदर चमकता है वैसे। एक और मैंने यू नो देखा था कि अगर आप आइस क्यूब्स करें, अभी तो फ्रिज वैसे आते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली यू नो प्रेस करते हो वो जो क्यूब्स है या क्रश्ड आइस है वो निकल जाता है, लेकिन अगर आप आइस क्यूब्स जमाना चाहते हैं तो अपने आइस क्यूब ट्रे में आप बॉइलिंग वाटर डालें इंस्टेड ऑफ जस्ट अ टैप वाटर, तो उससे जो आइस क्यूब होता है वो क्लियर रहता है। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: वेलकम बैक दोस्तों, चलो ट्रैफिक अपडेट देते हैं आपको। डेविस स्ट्रीट ऑक्सली, यहाँ पर इमरजेंसी रोड वर्क्स हो रहे हैं और ऑल लेन्स आर ब्लॉक्ड बोथ डायरेक्शंस। और बैकेट रोड मैकडोवल जो क्रश हुआ था नॉर्थ बाउंड इज नाउ क्लियर्ड। और हैमिल्टन रोड मैकडोवल यहाँ पर मल्टी व्हीकल क्रश हुआ है, वन लेन इज ब्लॉक्ड वेस्ट बाउंड टूवर्ड्स शम साइड। ये चार मिनट पहले आया था हमारे पास। और दोस्तों, जब हम वेजिटेबल शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी जब लाते हैं, वेजिटेबल मार्केटिंग जब लाते हैं, मार्केट से हो या फिर सुपरमार्केट से हो, तो टोमेटोज जो होते हैं ये सभी चीज़ हम फ्रिज में धर देते हैं, क्यूकम्बा और अगर फ्रूट्स है मेलन्स एंड स्टफ, एवोकाडो होता है, ये सब फ्रिज में धरते हैं। वैसे हाँ अच्छा ठीक है, फ्रिज में धर देते हैं क्योंकि आप उसको कहते हैं लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है, प्रिजर्व रहते हैं, खराब नहीं होता है। स्पेशली अगर आप मार्केट से लाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर बेसिकली काफ़ी प्रिजर्वेशंस इसमें नहीं रहते हैं तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप टमाटोज फ्रिज में धरते हो तो ये अपना जो फ्लेवर है ये लूज कर देता है इन द कोल्ड। तो ही मैं सोचूं कि बैक होम इन फिजी जब मैं गई थी तो टमाटोज इतने ज़्यादा स्वीट और जूसी कैसे थे, यू नो, घर का ही था। एंड यहाँ पर टोमेटोज इज जस्ट फॉर द रंग एंड द रूप, एंड उसका भीतर कोई स्वाद नहीं है। इट इज नॉट टेस्टी, इज जस्ट देयर बिकॉज इट्स अ टोमेटो, इट्स येलो, इट्स और रेड विद द लिटिल सीड्स इन दैट एंड इट्स अ टोमेटो। लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली सो ये जब पोस्ट मेरे हाथ लगा, आई वाज थिंकिंग हाँ देखो, बिकॉज घर पर बैक होम वहाँ पर टोमेटोज मेरी जो मॉम है वो फ्रिज में नहीं रखती, बाहर रखती है किचन में, एंड सो इट्स नाइस एंड स्वीट एंड जूसी एज वेल। और कुछ लोग पोटैटोज को फ्रिज में धरते हैं, वैसे रखना तो नहीं चाहिए, कोई स्टॉप भी नहीं है कि आप नहीं रख सकते। तो ये तो एक पर्सनल चॉइस है, अगर आप पोटैटोज ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं तो शायद आप सोचते हैं कि ख़राब ना हो जाए। तो ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक अनियन खरीदता है या दो पोटैटोज खरीदते हैं। तो हमारे जैसे जो इंडियन कम्युनिटी होता है, वी हैव दिस गलो, जब हम सुपरमार्केट जाते हैं तो हमारा जो पोटैटोज का बाइंग होता है या अनियन का बाइंग होता है, गार्लिक खरीदते हैं, जिंजर खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं। और कुछ लोग आप देखते हो कि यू नो एक अनियन खरीदता है तो ही रोज ही लगे रहते हैं सुपरमार्केट। आई बिलीव कि ऐसे ही चलता है सुपरमार्केट्स, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारा कोई हार्ट फीलिंग्स है या कुछ, या मैं रिडिक्यूल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया मैंने। सो और ब्रेड आप डालते हो फ्रिज के अंदर तो ये ब्रेड ज़्यादा जल्दी से ड्राई हो जाता है, और गार्लिक को आप फ्रिज में डालते हो ये जल्दी से स्प्राउट करने लगता है, और क्यूकम्बर्स बोटरी हो जाते हैं। अगर आप क्यूकम्बर धरते हो फ्रिज के अंदर तो उसमें एक जो पेपर टॉवल है वो डाल दें, और अगर धनिया भी इवन, तो एनीथिंग आप सोचते हो कि वो वोटा निकलता है उसमें से, आप अगर उसमें पेपर टॉवल समझ लो, अगर स्पिनच आपने खोला है पैकेट तो आधा पैकेट बच गया है, उसमें आप पेपर टॉवल डालकर उसको अच्छी तरह से रबर बैंड कर दे तो वो जो पेपर टॉवल है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, जितना उसमें से जो मॉइस्चर निकल, जो लीव्स है उसमें से निकलता है गैसेस, तो वो अब्जॉर्ब होता है पेपर टॉवल में, तो आपके जो स्पिनच है वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। ऐसे ही क्यूकम्बा के लिए। और वैसे दोस्तों एक टिप देते हैं, और एक अगर आप जो स्पिनच खरीदने जाते हैं, अगर प्लास्टिक में जो लीव्स होते हैं वो खरीदते हैं, जो प्लास्टिक ढेर फूला फूला सा होता है उसे ना खरीदें, क्योंकि वो ओल्ड लीव्स है। और जो चपटा हुआ होता है, आप सोचेंगे कि अरे ये तो चिपट गया, लेकिन वही फ्रेश है, बिकॉज वहां पर अभी गैसेस ओल्डने हुए हैं कि उसमें से लीव जो गैस निकले, जो लीव्स है वो ओल्डने हुए हैं कि उसमें से गैसेस निकले, तो जो जिसमें ढेर एयर होता है वो ओल्ड लीव्स है। तो नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें आप। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक वी हैव इनफ ऑफ द टिप्स टुडे। एंजॉय करते हैं ये गीत।

0: मान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते।
1: दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। वैसे कहते हैं जो तुम जब वो बन जाओ, तुम जब वो बन जाओ जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, तब उनके लिए कुछ करना जो कभी तुम हुआ करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है, आपने हमारा साथ दिया इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। हैव अ लवली डे, ब्यूटिफुल वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन नमस्कार।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: है रेडियो 1701 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग बरतर जात।
1: और रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमा प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। ये है रेडियो 79 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।
2: रब सल्लिम।

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवालीस, हमारे पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवालीस।

0: और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगर एक बार तक के लिए आपके साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
6: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
5: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
6: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
7: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
8: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
7: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
8: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
7: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
8: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
7: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
8: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में